FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है रविवार, शक संवत 1948, श्रावण माह, 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को ए

0: स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
3: ये है विविध भारती।

जागता राष्ट्र पुरुष है। ये था चिंतन। और अब सुनिए कार्यक्रम वंदनवार।

पहले चिंतन। आज अटल बिहारी वाजपेयी की याद का दिन है। उनके अनुसार हम देश के लिए जीना सीखते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता

सुबह के 6:30 हुए हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। सुबह 8:00 समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10:00 समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे, और हेलो चंडीगढ़ में आपको मालूम है हम एक टॉपिक देते हैं आपको, उस टॉपिक पर आप और हम मिलकर मंथन करते हैं, अपने अपने विचार जो हैं वो साझे करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि बरसात में वाहन चलने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल। तो बरसात के मौसम में ये भी एक समस्या है कि वाहन चलने से कभी कभी जो पानी है वो उछलता है और हर किसी को परेशान कर देता है, कभी जाने में कभी अनजाने में। तो बरसात में अपने वाहन को चलाते समय सावधानी बरतें, राहगीरों का भी रखें ख्याल, ये है आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक।

दिन में 11 बजे एक ही फिल्म से प्रोग्राम आप सुनेंगे। 11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। इस प्रोग्राम में हम आपको 5 फिल्में देते हैं। इन 5 फिल्मों में से आप कोई भी जो फिल्म है अपनी पसंद की चुनिए, अपनी पसंद का गाना चुनिए और बातों ही बातों में हमें वो गाना बताइए, हम उसे प्ले करेंगे। प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में दिन में 11:30 पर। दोपहर 12 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में।

स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर, और शाम 5:30 आज शाम सुहानी प्रोग्राम आप सुनेंगे। इस प्रोग्राम में अपने वरिष्ठ नागरिकों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस कड़ी में आज प्रोफेसर पीएस नरोला से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तो हैं ही, साथ में फिल्म निर्माता हैं, शिक्षाविद हैं, तो इनसे बातचीत रमेश कपूर की हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30।

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का आप सुनेंगे रात 9:15 पर। शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम श्री राम चरित मानस। 6:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत सरिता। 7 भूले बिसरे गीत और 7:30 प्रोग्राम हम है राही प्यार के। 8:15 पर प्रोग्राम त्रिवेणी और 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक।

0: ये थी जानकारी झरोखा में हमारे आज के कार्यक्रमों की।
1: झरोखा में

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 282।

अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के दसों सिर मुड़े हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है।

0: गीता श्री रामचरित मानस गान का भाग 282।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शोभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्यौहार आते हैं, व्रत त्यौहार, जैसे हम कहते हैं कि तीज त्यौहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्यौहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शोभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया
1: जी
0: था,
1: जी हाँ।
0: और नागपंचमी भी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और रक्षाबंधन भी तो होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसके काफ़ी पद मिलते हैं, और एक प्रस्तुत करना चाहूँगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस चीज को गाने का प्रयास है, और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ द्योस सलून्यो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब
0: मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है,
1: लड़ी उन्होंने गुथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाठ के फुंदना कमल नाल मनु मधुप लगेगर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लयहो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुसकन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है।
0: इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ।
0: तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई है,
1: विशेष उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी
0: जी। और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई। तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक
1: वो भी है। और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे भाई के साथ साथ भाभी को भी लूम्बा नाम की एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है। उसे कुछ लोग लूम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए

0: अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लूम्बा भाभी को भी बांधा जाता है
1: जी। तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी, इनके हाथों में राखी बंधी है। सुनाइए ना पद।

0: शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब
1: बिल्कुल।
0: तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षा काल में होता है, क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ
1: जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमति लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो, जहां तहाते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत, निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नयन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत, लय

छिरकत दूध दही घृत हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चढ़ रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतनी इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया। रोरी तिलक दुकूल सुभूषण नंद सबन पहरावत। और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर दास बधाई पावत। वाह।

0: श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में अभी आपने हमारी श्रृंखला वर्षा चौमासा की 16वीं और आखिरी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रही थी प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक की थी, तबले पर संगत अनीश प्रधान की, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहायिका विनीता ढोलकिया,

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 7 बजे हैं। भूले बिस्ते गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था तूफान और दिया। कार्यक्रम का अगला गीत गीता दत्त की आवाज में हमने फिल्म श्रीमती 420 से लिया है। गीतकार जानिसार अख्तर और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है पटरानी।

कार्यक्रम का अगला दीप फिल्म का नाम है जलदीप। युगल स्वर सुधा मल्होत्रा और स्नेहल भाटकर की। इस गीत को कैफ इरफानी ने लिखा है और धुन बनाई है स्नेहल भाटकर ने।

मन को दीप बना, तू रस्ते की हर ठोकर को, तू रस्ते की हर ठोकर को कदमों

बालक है तू मालिक है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, दो हाथों में तकदीर लिए।

फिल्म जलदीप का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म रामी धोबन का गीत अभी आप सुन रहे थे। गाने वाले कलाकार गीता रॉय और हेमंत कुमार थे। इसे राम मूर्ति ने लिखा था और धुन बनाई थी हिरेन बोस ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम फूल बने अंगारे।

फिल्म रामी धोबन का गीत अभी आप सुन रहे थे। गाने वाले कलाकार गीता रॉय और हेमंत कुमार थे। इसे राम मूर्ति ने लिखा था और धुन बनाई थी हिरेन बोस ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम फूल बने अंगारे। शब्दकार आनंद पक्षी हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: और आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म नगमा का गीत। गीत को जे नक्शाब ने लिखा है और धुन नाशाद की है।

0: शमशाद बेगम को अभी आपने सुना फिल्म नगमा में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मर।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज पार्श्व गायिका हेमलता का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आज उन्हीं के गाए कुछ गीत।

ये है यशुदास और हेमलता की आवाज में फिल्म गोपाल कृष्ण का गीत, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

यशुदास और हेमलता को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गोपाल कृष्ण। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और हेमलता की आवाजी। फिल्म का नाम परख। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्म परख का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, स्वर किशोर कुमार और हेमलता के थे। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

आइए सुनते हैं यशुदास और हेमलता को फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पियामन भाई। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

यशोदास और हेमलता को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था धोखेबाज। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, आवाजें मुकेश और हेमलता की, फिल्म का नाम विश्वास।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में
1: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत

0: नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अंबिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC-JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
1: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8:15 हो चुके हैं।

आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का पीआर भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो

0: या मिट्ठू बने पूछ भी उसी की होती है। और अगर आप अपने कामों के बारे में न बताएं तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं। देखो

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भाग किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ, और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

तो जहाँ जरूरी हो वहाँ तो जरूर करें प्यार, लेकिन सभी से कीजिए दिल से प्यार। इस संदेश के साथ अब दीजिए आज के त्रिवेणी से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में.

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, जहां सुरों की महफिल है और नई फिल्मों के संगीत का जादू है।

0: प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये था नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, आवाज मोहित चौहान की थी और फिल्म का नाम था दिल तो बच्चा है जी।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
0: दोस्तों आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद का दिन है और आप सभी जानते हैं कि अटल जी केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक महान कवि, संवेदनशील व्यक्तित्व और राष्ट्र के सच्चे सेवक थे। उनके विचार, उनकी वाणी और देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कविता यहाँ हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये कविता बताने का अर्थ या आपके सामने रखने का अर्थ इतना ही है कि इस कविता में उन्होंने दृढ़ और भावपूर्ण अंदाज रखा है। उनकी कविता है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, जितने की धार बही चूहा ही पाहन को, टूटेगा पाहन जो ज्यादा हो साधन को, सुमन गाता नहीं छन छन कर जीवन को, रसदार में बहता बहता जाता हूँ गीत नया गाता हूँ, भुज बल कर डाले बाएं दाएं को घेरा, किस किस को रोकेगा ये अंधियारा मेरा, मैं निज प्रकाश में ही जलता जाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ।

0: सुनिधि चौहान और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था राजी। गीत रचना गुलजार साहब की और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द डर्टी पिक्चर, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुन रहे हैं। आवाज कमाल खान की, गीतकार रजत अरोड़ा और धुन विशाल शेखर की।

दोस्तों, आज मशहूर फिल्म निर्देशक डेविड धवन का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों ढेरों मुबारकबाद देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि डेविड धवन हिंदी फिल्मों के उस हुनरमंद निर्देशक का नाम है जिन्होंने हंसी को, कहानी और मनोरंजन को अपनी पहचान बना लिया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखने की खूबसूरत यादें भी दी है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म पार्टनर का गीत। गाने वाले कलाकार वाजिद, लाभ जुनेजा और स्नेहा पंत, गीतकार है शब्बीर अहमद और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने। फिल्म का नाम पार्टनर।

0: ये था पार्टनर फिल्म का गाना, आवाजें वाजिद, लाभ और स्नेहा पंत की थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा
0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
6: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
7: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक अंतराल।
1: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्या खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा

0: तू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं तनु वेट्स मनु इस फिल्म का गाना, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की, गीतकार राजशेखर, संगीतकार कृष्णा।

0: दोस्तों, आज जाने माने निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर का भी जन्मदिन है। विविध भारती परिवार उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता है। आप सभी जानते हैं कि महेश मांजरेकर, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सशक्त अभिनय किया, निर्देशन दिया और लेखन, यानी अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके किरदारों में गहराई है, अंदाज में बेबाकी है। उन्हें जन्मदिन पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनकी कला यूं ही पर्दे पर अपनी छाप छोड़ती रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संजू का गीत, आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, पुनीत शर्मा की रचना है और रोहन रोहन का संगीत है।
1: प्राण प्रिय,
0: ये महेश मांजरेकर की फिल्म है।

0: समझ हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि इस फिल्म में यानी संजू में महेश मांजरेकर ने एक छोटा सा कैमियो किया था।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: चलते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी जन्मदिन है और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला फिल्मों की उन शानदार अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सशक्त अभिनय की मिसाल कायम की है। उनकी फिल्म बॉम्बे हो, खामोशी हो, दिल से हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है और उनकी आंखों में जो भावनाएं आती हैं अभिनय में एक खास सहजता और उनकी जो हंसी है वो आज भी हमारे दिल में बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और यादगार पहचान है और हम सभी आज भी उनके अभिनय के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कंपनी का गाना, आवाजें आशा भोंसले, सपना अवस्थी और सुदेश भोंसले की। नितिन रेकवार के बोल हैं, संदीप चौटा का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

ये आवाज़ें संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैप्टिस्ट की फिल्म का नाम है मर्डर टू, सईद कादरी के बोल और संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर का संगीत।

दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार के सभी लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और रोमांटिक किरदारों से लेकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर अंदाज को बखूबी निभाया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का गीत, आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। अगला प्रोग्राम आज का अखबार, आइए सुनते हैं।
3: आज का अखबार।
2: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंज, आपसे लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन आज अखबारों की भाई छुट्टी है, हमारे रीजन की जो अखबारें हैं उनकी छुट्टी है, लेकिन खबरें तो हर पल हर घड़ी जो हैं घटती रहती हैं, और ऑनलाइन अखबार तो 24 घंटे हमारे सामने रहता है। तो सबसे पहले हम कल की बात करते हैं। कल पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से, उत्साह से, उमंग तरंग से मनाया गया। विदेशों में भी तिरंगा लहराया गया। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की बात करें तो यहां भी कार्यक्रम हुए, जहां देश भावना से रची बसी सांस्कृतिक झलकियां आकर्षण का केंद्र बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए नागरिकों को आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने को कहा, तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की युवाओं के लिए खासतौर से कि सरकार युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को मुफ्त

ऑनलाइन कोचिंग दिलाएगी। 1 करोड़ युवाओं को 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन देश में व्याप्त दिमागी नक्सलवाद, इससे हमें सावधान रहना होगा। और स्कूलों की बात की तो स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा निखारी जाएगी और उन्हें देश विदेश में खेलों के लिए तैयारी दी जाएगी। इस बार दोस्तों स्वतंत्रता दिवस समारोहों से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। देश नतमस्तक है अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिनके बलिदान से, त्याग से, समर्पण भावना से हम सब आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए हमें तन मन धन से मिलकर काम करना होगा। यही है सच्ची देशभक्ति।

और साथियों, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक जारी है। विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी तिरंगा सूर्यपथ तिरंगा बनकर छा गया। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया में ये अनूठी पहल हुई है, सूर्यपथ तिरंगा रिले चली। एक सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक सूर्यपथ तिरंगा यात्रा चली। शुरुआत इसकी हुई फिजी के सुबा से और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 54 देशों से होती हुई ये समाप्त हुई। फिजी से, जैसा कि हमने बताया, इसकी शुरुआत हुई उगते सूरज की दिशा से पश्चिम की ओर बढ़ती गई। भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और दुनिया भर में लोगों के उत्साह और भागीदारी ने इस यात्रा को विशेष बना दिया। मेरा तिरंगा, मेरी आन बान और शान।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम

सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। तो चलिए अब आपको CBSE के बारे में जानकारी देते हैं। CBSE दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। CBSE ने स्कूलों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 845 से ज्यादा वर्चुअल लैब्स का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा है। ये लैब्स खास तौर पर विज्ञान और गणित के लिए हैं। छात्र इन्हें मोबाइल, वेबसाइट या किताब में दिए गए QR कोड से खोल सकते हैं। हम आपको बताएं कि ये लैब्स क्या हैं। वर्चुअल लैब में छात्र क्या कर पाएंगे? ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। छात्र कक्षा में पढ़ाए जा रहे विज्ञान और गणित के कॉन्सेप्ट को इंटरैक्टिव तरीके से समझ और दोहरा सकेंगे। अब कौन सी कक्षा विषय की लैब कैसे मिलेगी ये भी हम आपको बता दें। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। छात्र कक्षा में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर छात्र पहले अपनी कक्षा और विषय चुनेंगे, फिर जिस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उससे जुड़ी वर्चुअल लैब खोलकर पढ़ाई कर सकेंगे। AI पावर्ड आस्क दीक्षा प्लेटफॉर्म में छात्र या शिक्षक संबंधित विषय खोजकर उपलब्ध वर्चुअल लैब और दूसरे डिजिटल संसाधन ढूंढ सकते हैं। वर्चुअल लैब्स दीक्षा पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग कोर्स के जरिए भी उपलब्ध है। इससे जरूरत के अनुसार छात्र डिजिटल सामग्री तक पहुंच पाएंगे। अब CBSE ने इस मामले में स्कूलों को क्या कहा है। सर्कुलर में प्रिंसिपल और स्कूल प्रमुखों से CBSE ने कहा है कि वे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं और इन संस्थानों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। दीक्षा पर सिमुलेशन, एनिमेशन, लैब वीडियो, डिजिटल दस्तावेज होते हैं। सिमुलेशन के छात्र प्रयोग की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से करके नतीजे समझ सकते हैं। तो ये है वर्चुअल लैब्स, और इन लैब्स को CBSE ने स्कूलों को कहा है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 845 से ज़्यादा जो वर्चुअल लैब्स हैं इन्हें बढ़ाया जाए, इनका इस्तेमाल बढ़ाने को कहा है। और छात्रों के लिए ये विशेष रूप से बहुत अच्छी बात हो सकती है, लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए, किसी विषय को जानने समझने के लिए और समझकर उसे फिर दोहराने के लिए। तो ये है वर्चुअल लैब्स।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अब आपको जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दे दें। जेम्स ऑफ इंडिया है अपने ज़िले की कहानी, अपनी ज़बानी। साथियों, देश के हर ज़िले की अपनी एक ख़ास पहचान होती है, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को, यानी हमारे शहर को भी शामिल किया गया है। इसके लिए पंजीकरण कैसे करना है? माई वेव्स

0: तो दोस्तों ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज का अखबार। अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि 10:05 पर हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल। ये है हमारा आज का टॉपिक। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि AI के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से

0: फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग दोपके की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। दूसरे दिन भी खेल बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
3: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

नमस्कार दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और किसी एक टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम का जिक्र हर बात में होता है, तो हमारे इस प्रोग्राम में भी मौसम से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, मौसम कैसा भी हो। अब आजकल बरसात का मौसम है, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ आसपास उतनी बरसात नहीं हुई जितनी सावन के महीने में होनी चाहिए या होती है, लेकिन बाकी हिमाचल में, उत्तराखंड में, हर जगह पहाड़ों पर जो है वो झमाझम बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि उससे नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर शहर में बारिश की बात करें तो शहर में भी जब बारिश होती है, झमाझम होती है, जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी की रफ्तार नहीं रुकती है, ज़िंदगी चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। ऐसे में जब हम सड़कों पर अपने वाहन दौड़ाते हैं बारिशों में, बारिशों के मौसम में, या जब बारिश हो रही होती है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। बस उस जिम्मेदारी को लेकर हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अब वो हमारा वाहन, जो बाइक भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है, हमारी गाड़ी भी हो सकती है, हमारा ट्रक भी हो सकता है, हमारी बस भी हो सकती है, यानी जिस चीज़ को हम ड्राइव कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। बरसात के मौसम में पैदल चलने वाले भी बहुत होते हैं, राहगीर होते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। आपने भी मंजिल तक पहुंचना है, उन्हें भी जाना होता है। तो ऐसे में आज हमने उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक चुन लिया कि बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल। तो ख्याल किस तरह से रखा जाता है, इससे जुड़ी कोई घटना है, कोई ऐसा संस्मरण है, कोई याद है जिसे आप याद करना चाहें, तो बेशक कीजिए इस प्रोग्राम में, अच्छा लगेगा। और हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इन तमाम बातों के बारे में आप दिल खोल कर बात कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 2660615, 2660617 और 2660619। ये हमारे तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को डायल करना है और बातें कर लेना है। तो बातों का सिलसिला जब तक शुरू होता है, आप जब तक हमारे यहाँ आते हैं, तब तक ये विज्ञापन सुन लेते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम में अब हमारे श्रोता आ चुके हैं। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नाम बताइए।
1: नमस्ते अनिल पुंज जी। नमस्ते
0: जी।
1: मेजर विजय आर्या, HM42 फेज 2 मोहाली। इस समय मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा, वाह।
1: सुबह के यहाँ 6 बजे है सर।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है। सुबह सवेरे उठ के,
1: सुबह से लगा के बैठा हुआ था आज का अखबार पहले, अब उसके बाद आपका पहला ही नंबर लग गया आज सर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जर्मनी से आपका नंबर पहला लग गया।
1: हाँ जी हाँ जी, लकी आज बहुत वॉइस के थ्रू मेरा लग गया ये। और मैं यहाँ पे टॉपिक भी बहुत बढ़िया सुन रहा था, मौसम। और यहाँ तो बड़ी गर्मी है सर, गर्मी में इस समय धूप निकली हुई है सुबह की, देख लो।
0: अच्छा 6 बजे। अच्छा मेजर साहब,
1: धूप निकली और गर्मी बहुत ज्यादा है सर यहाँ।
0: अच्छा मेजर साहब, आज जर्मनी में कहाँ से फरमा रहे हैं?
1: मैं ड्यूसेलडॉर्फ में बोल रहा हूँ, ड्यूसेलडॉर्फ से।

0: और सबसे खुशी की बात है आज मेरा जन्मदिन है।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप स्वस्थ रहें।
0: बहुत बहुत दूसरी बात कि हम अभी यहाँ से ठीक 9 बजे हवन करके स्विट्जरलैंड के लिए मूव करने जा रहे हैं बाई कार।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप
0: हैरानी हुई थी आज, मेरा लग गया था क्या नंबर पर।
1: हाँ, आप जिंदगी जीते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आर्य समाज की देन है सर मेरी।
1: जी जी जी जी, और आर्य समाज आपको सिखाता है कि सही जीना क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ठीक 8:30 बजे हवन शुरू होगा, 9 बजे यहाँ से चल देंगे हम।
1: ठीक है, तो अच्छा अब ये बताइए कि
0: 8 घंटे लगेंगे स्विट्जरलैंड के लिए।
1: हाँ, अब जर्मनी से स्विट्जरलैंड आप बाय कार जाएंगे।
0: बाय कार जा रहे हैं सर, क्योंकि काफी लंबा रास्ता है, हम 5 जने हैं, एक ही बड़ी गाड़ी 7 सीटर की है, बेटे ने, बेटा ही चला के लेके जाएगा, बेटा ही लेके आएगा।
1: बहुत बहुत खूबसूरत नजारे होंगे रास्ते में।
0: बहुत सुना था अभी तक, आज मौका भी बेटे ने दे दिया, बोलता चलो पापा आपको जन्मदिन पर आज स्विट्जरलैंड घुमाते हैं। अभी
1: क्या बात है, ये बहुत ही हरा भरा और प्यारा तोहफा आपके लिए, कुदरती नजारों में। अच्छा, तो अब जाने से पहले हमें जल्दी से बता दीजिए कि बरसात में वाहन चलाने में हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हम तो रोज देखते हैं भारत में, वहाँ पे रोड चलाते हैं, कार चलाते हैं, पूरी ध्यान नहीं रखते कि आगे भी कोई साइकिल वाला जा रहा है, पैदल जा रहा है, अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमा करके बिल्कुल आस्था से लेके जाना चाहिए जहाँ पानी खड़ा हो रोड के ऊपर, ताकि किसी दूसरे को गंदगी ना मिले और उसके कपड़े ना खराब हो।
1: जी, तो ऐसे में करना क्या चाहिए, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, एक आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं और सामने पानी नजर आता है, आपको भी निकलना है और एकदम से आप साइड पे देखते हैं कि कोई पैदल चल रहा है,
0: बिल्कुल स्लो स्पीड से लेके चलना चाहिए बिल्कुल, ताकि दूसरे को किसी को नुकसान ना हो।
1: और बारिश का ये पानी से जो सड़कों पे पानी होता है उससे बचते बचाते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। तो
0: तक पहुंचना है जी, किसी का भी नुकसान ना हो उसमें, जी ना खुद का हो ना दूसरे का हो।
1: तो मेजर आर्य जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी दूर जाकर भी, इतनी दूर जाकर भी जर्मनी में आप हमें नहीं भूले, आपने फोन मिलाया, आपने फोन मिलाया और पहला फोन आपका लग गया, आपको जन्मदिन की, जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत अभी सबसे पहले मेरे को भारत से ब्रिगेडियर गुरदेव हरसेन सिंह साहब का फोन आया कि आपका जन्मदिन है, जबकि 6 बजे थे यहाँ हमारे उस समय अभी।
1: चलिए,
0: रिव्यू लगा हुआ था मेरा, क्योंकि आज का अखबार ठीक यहाँ 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे आज का अखबार शुरू हो जाता है।
1: शुक्रिया जी, बाय बाय,
0: धन्यवाद।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में. आज का टॉपिक चल रहा है कि बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल. हेलो चंडीगढ़.
2: हाँ जी, नमस्कार जी.
1: जी हेलो चंडीगढ़.
3: हेलो
1: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए.
3: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से.
1: हाँ जी योगेश जी, क्या हाल है?
3: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं.
1: आज संडे फ्री होता है आपका?
3: नहीं, ज्यादातर फ्री ही होता है भैया.
1: अच्छा, संडे को क्या करते हैं?
3: देखिए, मूल काम खेती बाड़ी का है.
1: अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मुझे मालूम है.
3: खेतों में रहते हुए भी आकाशवाणी को ऐसा भूलने वाली बात नहीं रहती.
1: आप देखिए, खेतों में रहते हैं और खेतों में हर दिन हर घड़ी काम होता है
3: जी.
1: खेत को संभालना, देखना जी. है ना, उसका ख्याल रखना
3: जी.
1: और छत्तीसगढ़ आपका गांव कौन सा है?
3: बेमेतरा हमारा जिला पड़ता है भैया, और समीप में ही ग्राम सिरवा बांधा है.
1: अच्छा, सिरवा बांधा
3: जी. हाँ जी, लगा हुआ है जिला मुख्यालय से.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. तो योगेश जी, आज के इस प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक लिया है, वो समस्या तो आपको भी अपने गांव और शहर में देखने को मिलती होगी.
3: बहुत समस्या है
1: जब बरसात होती है, पानी खड़ा हो जाता है ना.
3: सबसे
1: वो तो जब निकलेगा तब निकलेगा. हाँ जी, क्या कह रहे?
3: सबसे बड़ा जो समस्या होता है भैया, फिलहाल इस समय में जिस समय खेतीबाड़ी का काम काफी ज्यादा प्रगति पे रहता है, तो अक्सर जो रास्ते पर जो मिट्टी वगैरह बिखर जाते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह का, तो वो काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है भैया. अधिकांशतः लोग उसमें गिरते हैं
1: जी,
3: और जो फिसलन जो होती है, तो ये मतलब हमारे लिए भी काफी परेशानी होता है, और जो हमारे आस पास या हमारे साथ में जो चल रहे होते हैं उसके लिए भी काफी ज्यादा मतलब घातक होता है.
1: हाँ, हम खास तौर से जो पानी खड़ा होता है ना, जब हम वाहन उसमें से लेकर निकलते हैं,
3: हाँ,
1: तो पानी उछल कर कई बार राहगीरों पर पड़ जाता है या पैदल चलने वालों पर
3: जी.
1: वो भी आपने देखा है, वो परेशानी झेली है कभी आपने? या कभी आपने ये सोचा कि मैं वाहन चला रहा हूँ, आगे मेरे पानी है, तो मैं अपने वाहन को थोड़ा स्लो कर लूँ, कुछ ऐसी कोई घटना याद आती है, कुछ ऐसा है?
3: बिल्कुल, ये तो प्रायः होता ही है भैया. मतलब जैसे गाँव वाँव जाना हो गया, तो कई बार तो गड्ढे ऐसे होते हैं, गड्ढों का अनुमान भी उतना नहीं हो पाता, तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम वाहन को काफी ज्यादा धीमा कर ले, ताकि अगर थोड़ा बहुत गड्ढा हो तो उनसे दूसरों को ही नहीं, हमें भी मतलब वो परेशानी ना हो.
1: बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आगे जो पानी खड़ा उसके अंदर गड्ढा है या नहीं है इसका पता नहीं चलता है.
3: और
1: लेकिन अगर आप वाहन की,
3: कई बार टेलीविजन में भी, न्यूज वगैरह में भी देखते हैं भैया, कि मतलब बाइक के समेत मतलब गहरे गड्ढे वगैरह में चले जाते हैं.
1: और आप अपनी गति को पहले ही थोड़ा कम कर लें, और उससे क्या है कि आप भी, वाहन आपको भी झटका नहीं लगेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और आपके आसपास जो पैदल चलने वाले हैं उन पर भी छींटे नहीं पड़ेंगे.
3: जी जी,
1: क्योंकि ये छींटे केवल पानी के नहीं होते, ये कीचड़ के होते हैं.
3: जी
1: जी. तो योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आप हमारे

0: शुक्रिया।
1: आप हमारे योगेश जी किसान श्रोता हैं।
0: जी जी है।
1: तो आपकी अच्छी फसल की हम कामना करते हैं।
0: जी जी शुक्रिया।
1: और इस बार क्या लगाया?
0: टोटल सभी खेतों में धान है भैया, अन्य फसलें जो रबी की फसलें आएंगी तो उसमें गेहूं, चना, तिवरा, लाग, धनिया ये सब लगेगा।
1: अच्छा, छत्तीसगढ़ में मौसम ने साथ दिया है कि ज्यादा बारिश हो गई?
0: नहीं भैया, 15 दिनों से तो बारिश हुआ ही नहीं था, और
1: हुआ ही नहीं।
0: पिछले रात को थोड़ा सा अच्छा बारिश हो गया, एकदम जरूरत और समय के मुताबिक।
1: आप चिंता न कीजिए, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही आलम है, कभी कभार हो जाती जब मूड करे, अदरवाइज तो सावन की बारिश तो नदारद है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: शुक्रिया बात करने के लिए आपका इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह से मिलते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और हमारे श्रोता ऑनलाइन हैं।

0: नहीं भैया, 15 दिन से तो बारिश हुआ ही नहीं था,
1: हुआ ही
0: और
1: नहीं है।
0: पिछले पिछले रात को थोड़ा सा अच्छा बारिश हो गया, एकदम जरूरत और समय के मुताबिक।
1: आप चिंता ना कीजिए, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही आलम है, कभी कभार हो जाती है जब मूड करे, अदरवाइज तो सावन की बारिश तो नदारद है।
0: हाँ जी, जी
1: शुक्रिया बात करने के लिए, आपका इस
0: जी
1: प्रोग्राम
0: धन्यवाद,
1: में हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह से मिलते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और हमारे श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। हाँ
2: हाँ जी नमस्कार जी, अनिल बंसल बोल रहा हूँ जी,
1: जी
2: पंचकुला से
1: अनिल जी,
2: महाराष्ट्र
1: कैसे हैं
2: से।
1: आप?
2: बढ़िया जी बढ़िया। सफर में आप, हम सफर बन ही जाते हो अक्सर।
1: जी क्या कह रहे हैं,
2: मैं क्या, हमारे सफर में हम सफर आप बन जाते हो साथ
1: क्या बात है,
2: साथ।
1: अनिल से मिले अनिल।
2: हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या, अक्सर जब मैं सफर कर रहा होता हूँ आपकी याद आ जाती है और आप आ जाते हो।
1: क्या बात है, आज के इस दौर में कोई किसी को याद करता है, कोई किसी का ख्याल रखता है, बहुत बड़ी
2: हाँ
1: बात है। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं आकाशवाणी।
2: जी हाँ जी, कल मैंने आपकी बड़ी सुंदर फोटो देखी, 15 अगस्त के मनाई है अपने, बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या,
1: जी
2: हमारा
1: जी
2: परिवार
1: जी
2: एक इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं
1: बिल्कुल,
2: जी।
1: 80वां स्वतंत्रता दिवस हम सब ने मनाया है,
2: हाँ जी हाँ जी
1: देश क्या विदेश क्या हर जगह धूम है
2: हाँ
1: हमारे तिरंगे की।
2: हम हाँ हम सल्यूट करते हैं
1: जी
2: जी, क्योंकि आजकल बहुत कम गैदरिंग देखते हैं, अभी अक्सर होते हैं, पहले वो हो जाते थे, आजकल तो बड़ा खुशी होती है अभी ऐसे सब
1: जी देखिए,
2: अपने भाइयों को देखते
1: यही
2: हैं। हाँ
1: हमारी पहचान है, यही हमारी भारतीयता है।
2: जी हाँ जी
1: तो खैर अनिल जी, आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, बरसात में वाहन चलने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल, क्या कहना चाहेंगे जनाब?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है जी। मैं क्या देखता हूँ अक्सर, जंगस्टर देखते हैं जी, कोई खड्डा है जहाँ हो रहा पानी रुका हुआ है, आजकल बरसात में अक्सर रुक जाता है पानी, तो वो पानी में गड्ढे में जब गाड़ी का टायर डालता है तो ऐसे फैल जाता है, कई बार चपेट में 5-4 लोग आ जाते हैं, और 2 व्हीलर वाले बहुत आते हैं चपेट में। हमारे साथ तो खुद हुआ जी, एक बार हम स्कूल जा रहे थे छोटे होते, ऐसे जैसे बाइक ने मारा, तो हमारे को घर वापस जाना पड़ा, और उस दिन घर से छुट्टी करनी पड़ी भी, हमारे कपड़े खराब हो गए थे। हाँ
1: बिल्कुल, मूड भी स्पॉइल हो गया, कपड़े भी हो गए।
2: बच्चों का तो बिल्कुल, जो पैदल बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं टाइम ले, उस समय तो बिल्कुल बच्चों का ध्यान रखना चाहिए भी, पास से बिल्कुल
1: बिल्कुल आप सही कह रहे
2: करना
1: हैं,
2: चाहिए।
1: स्कूल का टाइम है, बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में जा रहे
2: हाँ
1: हैं,
2: हाँ यदि
1: अब
2: उनकी ड्रेस खराब होगी देख लो, फिर
1: तो फिर
2: उनका
1: वो
2: मूड
1: क्या
2: भी खराब
1: करेंगे।
2: होता है, और फिर स्कूल में नहीं जा पाते, स्कूल से छुट्टी
1: हाँ
2: करनी पड़ती है जी।
1: तो ये कहने को एक छोटी मोटी बात है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा परिणाम होता है इसका। और गड्ढे गड्ढे तो चलो अलग बात है, अगर कोई गड्ढा हो सकता हो,
2: हाँ
1: लेकिन
2: गड्ढे चलो,
1: सड़क पर खड़ा पानी
2: अपने
1: जो है।
2: चंडीगढ़
1: हाँ
2: शहर में तो चलो है नहीं, मंडियों में देखें और देखें, बहुत जगह गड्ढे गड्ढे हैं, वहां पे अक्सर पानी टायर लग, जब गड्ढे में जाता है तो पानी उछल के जाता है 2 व्हीलरों पे और पैदल वालों पे।
1: अब बिल्कुल, अगर आगे पानी खड़ा है तो हल्का सा पानी अगर उछाल लेता है
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: किसी
2: अपने
1: राहगीर के कपड़े खराब कर सकता है,
2: वो
1: उसका
2: स्पीड
1: पूरा दिन खराब हो
2: स्लो
1: सकता
2: कर
1: है।
2: लेनी चाहिए,
1: अच्छा
2: और
1: हमने ये भी देखा है कई
2: हाँ जी
1: बार, कई इस मामले में बड़े मतलब समझदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं।
2: हाँ बिल्कुल
1: अगर
2: सभी, मैं वही आपके माध्यम से यही कहता हूँ सभी को, जे आजकल सावन रातों ये 2 महीने तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, जब बारिश हो तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए इसका।
1: मैं ये कह रहा था, कई लोग जो हैं अगर छींटे लग भी गए उनकी गाड़ी से उनके टायर से तो वो खड़े हो जाते हैं
2: बिल्कुल हो जाते हैं,
1: और सॉरी भी फील करते हैं।
2: कई सॉरी फील कर लेते हैं, कोई झगड़ते भी है जी वो तो।
1: हाँ, वो तो वो बात अलग है, लेकिन जो पॉजिटिव बात है हमें उसे बढ़ावा
2: पॉजिटिव
1: देना
2: बात
1: चाहिए
2: यही
1: ना।
2: है भी, हाँ सॉरी फील कर
1: हाँ
2: ले, फिर भी है ना, वो भी काफी हद तक।
1: या आप जरा सा उसको

0: हाथ अपना हिला दें या ये थोड़ा सा मान लें बिना कहे भी कि भाई जरा सी गलती हो गई,
1: काफी जो उनको हट किया होता है उसके भरपाई हो जाती है जी, 90%।
0: हाँ, 90% भरपाई हो जाती है, क्योंकि कपड़ों पे लगे दाग जो हैं वो धुल सकते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन मन पे लगी तो वो बहुत गहरी लगती है। तो किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए।
1: जा रहे होते हैं तो बच्चे को यदि उसकी ड्रेस कराओगे पहले तो गाली निकाल लेगा जी, जहाँ और कोई बच्चे शांत हो के बाहर घर आ जाएगा तो गाली निकाल लेगा।
0: बिल्कुल सही है, तो किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए।
1: हाँ, मन नहीं दुखाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में,
0: क्योंकि निर्मल पानी, साफ पानी, बारिश की बूंदे तो अच्छी लगती है भाई मेरे, लेकिन वो बारिश
1: की तो मेडिकेटेड पानी है इसका, तो वैसे चलो एंजॉय करना चाहिए,
0: लेकिन बारिश की बूंदें जब सड़क पे आ गिरती हैं तो वो कीचड़ बन जाता है।
1: वो कीचड़ बन जाती है।
0: शुक्रिया अनिल जी, आप कहाँ से फरमा रहे हैं? सुनाम से?
1: ना जी ना, पंचकुला से, सेक्टर 12।
0: अच्छा अच्छा, बहुत दूर ले गए आपको मैं पंचकुला से। ठीक है जी बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस प्रोग्राम में। जी
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: विविध भारती चंडीगढ़ से समय श्रोता सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। इस प्रोग्राम में आज का टॉपिक है मौसम के मुताबिक है कि बरसात में वाहन चलने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल, राहगीरों का, पैदल चलने वालों का, वो सबसे पहले ख्याल होना चाहिए। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई घटना है, कोई संस्मरण है, बेशक आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। हेलो चंडीगढ़ जी, नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: राम ठाकुर है
0: जी,
3: अनंत राम ठाकुर।
0: अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है।
3: आप अनंत राम ठाकुर?
0: अनंत राम ठाकुर,
3: हाँ जी, जी सोलन से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, सोलन कहाँ से ठाकुर साहब?
3: मैं शांति से बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा जी, सोलन में मौसम कैसा है? धूप निकली है, बादल है कि बारिश है?
3: सुहाना मौसम है।
0: सुहाना?
3: हाँ जी, हाँ जी।
0: सुहाना कैसा? ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि पानी बरस रहा है? बारिश हो रही है?
3: बारिश नहीं है सर, आज साफ है मौसम।
0: अच्छा, तो हिमाचल में तो भारी बारिश हो रही है भाई, अपना अपना ख्याल रखिएगा।
3: हाँ जी, थैंक यू सर।
0: और बरसात में अगर कहीं जाना इतना आवश्यक नहीं है तो घर से मत निकलिएगा।
3: हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है,
0: क्योंकि पानी के आगे किसी का बस नहीं चलता।
3: नहीं, वो तो ठीक है,
0: बड़े बड़े पहाड़ भी दरक जाते हैं।
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो खैर ठाकुर साहब, आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक तो आपको मालूम होगा।
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: क्या कहना चाहेंगे?
3: हाँ जी, हाँ जी।
0: कहिए साहब, कहिए।
3: मेरे को जैसा नहीं कि जब भी बारिश हो तो वाहन बहुत तेज गति से नहीं चलानी चाहिए
0: जी,
3: क्योंकि कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी जो है स्किड हो सकती है। तो सबसे बड़ा अपने लिए भी खतरा है। दूसरी बात, अगर आप तेज वाहन चलाते हैं तो कई बार बारिश में जो है पानी खड़ा हो जाता है और गड्ढे होते हैं और उसमें पता नहीं लगता, तो वाहन को भी नुकसान होता है
0: जी।
3: और तीसरी बात, जो पहले वक्ताओं ने कहा कि जब भी हम वाहन तेज गति चलाते हैं तो जो राहगीर है उनके ऊपर जो है कीचड़ के छिटके पड़ जाते हैं, और कई बार कोई राहगीर ऑफिस में जा रहा है तो कितना उसको जो है फील होता है कि अब मैं ऑफिस कैसे जाऊं। तो उसके लिए ये कि धीमी से वाहन चलेगी तो, और दूसरों का भी ख्याल रखेंगे तो यह बहुत जरूरी है कि जो राहगीर है उनके ऊपर जो है छिपके ना पड़े, तो धीरे से ही वाहन चलाएं।
0: बिल्कुल सही ठाकुर साहब, आपने कहा कि छींटे ना पड़े, धीरे ही गाड़ी चलाएं, और अगर गाड़ी को नियंत्रण करना पड़ गया तो बड़े आराम से आप उसे रोक सकते हैं,
3: रोक सकते हैं और
0: 11th तार पे भी रोक सकते हैं जी। शुक्रिया ठाकुर साहब बात करने के लिए आपका
3: जी,
0: शुक्रिया,
3: थैंक यू सर।

0: तो 7 बजे।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जारी है। फिलहाल इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं और बातचीत का सिलसिला, फोन कॉल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगले श्रोता की तरफ मुड़ते हैं। हेलो चंडीगढ़।
5: हेलो
1: जी।
5: हाँ जी, नमस्कार जी। अनिल जी, गोविंद कुमार सेक्टर 23 चंडीगढ़ से।
1: अरे गोविंद कुमार, बहुत दिनों के बाद आए भाई, क्या बात।
5: जी जी, आज आपका प्रोग्राम सुन के ऐसा लग रहा था कि सर से आज आपकी बात हो जाए तो बहुत होगा, अच्छा होगा। लेकिन पहली बार, पिछली बार कॉल मेरी रह गई थी, लेकिन अब की बार लगी, मेरा लक है।
1: बहुत अच्छी बात है। बात सर, आप करना चाहते थे
5: सर, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
5: आपको 15 अगस्त की बधाई फिर से।
1: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
5: 80वें ये आपके लिए जीवन में बड़ी खुशहाली लेके आए सर, इस देश के लिए खुशहाली लेके आए ये साल।
1: जी, पूरे भारत वर्ष के लिए।
5: जी जी जी।
1: और जो विकसित भारत का सपना है हमारा 2047 तक,
5: बिल्कुल बिल्कुल जी, उस राह पर हम आप भी भागीदार हो और मैं भी भागीदार बनूं, मैं ऐसी कामना करता हूं।
1: उस राह पर हम सब मिलकर आगे बढ़ें।
5: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
1: और तो, गोविंद जी, आज के इस टॉपिक पर आए तो क्या कहना चाहेंगे
5: सर? आपका टॉपिक हमेशा ही समय के अनुकूल होता है। आजकल बारिश का टाइम है,

0: ठीक है सर, सावन की वो छड़ी तो भी आजकल नहीं रही जो सात सात दस दस दिन लगती थी बरसात, लेकिन फिर भी आपके आपने विषय बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि आजकल रोडों पे जहाँ कहीं पानी खड़ा होता है खास करके
1: जी,
0: तो हमें उस जगह से गुजरते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए
1: जी।
0: पहली सावधानी कि किसी को दूसरे को मिट्टी छिट्टा ना लगे आपकी वजह से, मेरी वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से। दूसरी बात, वो गड्ढा इतना गहरा ना हो कि खुद आप ही फंस जाए
1: जी।
0: हम आप और हम कभी बहुत खबरें सुनते हैं, लोग अनगहली करके उस पानी में उतर जाते हैं और फिर वो बहने लग जाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस तरह की चीज जहाँ खड़ा पानी हो उसमें घुसने से अपने आप को बचाएं
1: जी। गोविंद जी,
0: हाँ जी,
1: कोई ऐसी घटना कोई कभी याद आती हो, आप किसी काम से जा रहे हो, आप गाड़ी में हो या आप पैदल हो?
0: सर मैं मेरा एक ऐसा एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा रूल है, जैसे बारिश है या पैदल भी बंदा जा रहा है, कोई साइकिल से भी जा रहा है, तो मैं सर रुक जाता हूँ। मैं हमेशा ही, मेरी आदत है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो गाड़ी है, इंजन है, मैं उसका एक्सीलेटर दूंगा वो निकल जाऊंगा, लेकिन रिक्शे वाला साइकिल वाला वो बेचारा अपनी मेहनत से उसको चला रहा होता है, मैं उसका ब्रेक नहीं मरवाना चाहता जी कभी भी, मेरी ये आदत है।
1: वाह वाह, गोविंद जी आपको सलाम करते हैं,
0: क्योंकि मैं उसको पहले रास्ता देता हूँ, चाहे वो पैदल चल रहा हो चाहे साइकिल पे। और सर चंडीगढ़ में तो मैंने उस दौर को भी देखा है जब साइकिलें बहुत ज्यादा होती थी, रिक्शे वो दूसरे वाले रिक्शे होते थे, तो मैं मतलब मेरी ये हमेशा से आदत है, कार तो खैर चलो मेरे पास अब 15-20 साल से है, लेकिन पहले मेरे पास जैसे हमारी एजेंसी थी मोपड़ होती थी तब भी मैं उनको पहले निकलने देता था। तो ये मेरी शुरू से आदत है, पानी वाली तो बहुत दूर की बात है, ताकि किसी को छिटा ना लगे, किसी को परेशानी ना हो। हाँ तो मैं इस विषय में सर शुरू से ही थोड़ा सा जागरूक रहा हूँ। तो
1: देखिए किसी पर कीचड़ उछालना तो अच्छी बात नहीं ना,
0: बहुत बुरी बात है सर, बहुत बुरी बात है,
1: उससे हमें बचना चाहिए।
0: हाँ जी हाँ जी, हमें किसी का कीचड़ साफ कर सके तो सौभाग्य है, लेकिन हम किसी में डाल दे तो हमारा दुर्भाग्य है साहब, मैं से जानता हूँ। अगर हम किसी में कीचड़ डाल दें तो हमारा दुर्भाग्य है।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है,
0: क्योंकि किसी का कीचड़ साफ करना चाहिए सर, किसी के ऊपर डालना नहीं चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही है, और क्योंकि कीचड़ डालना जाने अनजाने या कैसे भी उछालना वो आसान हो सकता है, लेकिन दिल पे क्या लगती है वही जानता है,
0: वही जानता है। तो कई बार किसी बेचारे को, अभी एक श्रोता बता रहा था, वो अपने कपड़े चेंज करके आया, क्या पता उसको कितनी जरूरी जाना था, क्या पता उसको क्या कौन सी इमरजेंसी थी, तो हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी को और परेशानी हो, और इन चीजों से हमें बचना ही चाहिए साहब।
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
0: आपके टॉपिक सर हमेशा ही समय के अनुकूल होते हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए।
1: गोविंद जी ऐसा ना, हमारे देश में कई मौसम हैं, कई ऋतुएं हैं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: और हमारी बातचीत में अगर गर्मी है तो गर्मी की बात तो होनी है, सर्दी है तो सर्दी की बात भी होती है, और बारिशों का मौसम है तो बारिश की भी बात होती है।
0: हाँ जी हाँ जी, पर कई बार क्या होता है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बगैर सुल्ताल की बात करते हैं, जिसमें सुल्ताल ही नहीं होती, बरसात का सीजन चल रहा है, आप बात करने लग जाए ठंड की, वो ये एक सर बहुत बड़ी बात होती है। आप जैसे बुद्धिजीवी बंदे बैठे हैं वहां पे आपके इस आकाशवाणी में, इसलिए मैं उसका साधुवाद देता हूँ कि वो ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो समय के अनुकूल है।
1: जी नहीं, वो बात क्या होती है कि जब बरसात ज्यादा हो जाती है तो ठंडी भी लगने लग जाती है।
0: हाँ ठीक बात,
1: तो
0: है
1: वो बरसात को भूल जाते हैं, शायद ठंड की बात करने लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सर, अभी परसों की बात है, थोड़ा सा सुबह सुबह बारिश हुई 2-10 बजे तक, तब थोड़ी सी हवा ठंडी चलने लगी थी, तो फैन बंद करने पड़े थे। ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है ये,
1: तो मौसम हम पे तारी रहता है, मौसम के जादू से हम बच नहीं सकते।
0: बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: तो सेम हेयर गोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
0: थैंक यू जी, नमस्कार जी, जय हिंद जय भारत।
1: जय हिंद।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, आकाशवाणी चंडीगढ़ से चल रहा है और टॉपिक है बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल। हेलो चंडीगढ़
2: जी। नमस्कार जी अनिल जी, मैं रामवीर बोल रहे जी, गांव गिरमत जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से
1: जी। जी रामवीर जी, क्या हाल है आपके?
2: हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सभी को, चंडीगढ़ आकाशवाणी को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई
1: जी। आपको भी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं।
2: हाँ जी, हाँ जी, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश और हमारे प्रत्येक नागरिक अच्छे कार्य करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे जी।
1: बस अपने अपने स्तर पर अपने अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वाह करना है।
2: बिल्कुल जी।
1: तो आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना है आपका?
2: हाँ जी, आज का टॉपिक तो देखिए यही स्वतंत्रता ही जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है? तो स्वतंत्रता हमारी तभी सार्थक है जब हम दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे कि किसी का नुकसान ना हो। अब यही देख लो कि वाहन चलाते समय अगर कहीं भीड़ में है या बाजार में है, कहीं खड्डे में पानी खड़ा हुआ है, अगर हमने थोड़ी सी गलती करके दूसरों के कपड़ों पर छींटे मार दिए, तो हम कहेंगे कि ये स्वतंत्रता का नजायज फायदा उठा रहे हैं जी। तो इस तरह भी स्वतंत्रता का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और सब चारों तरफ देखकर ही हमें अपना ध्यान रखना चाहिए जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हेलो चंडीगढ़।
3: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
1: शर्मा जी वेलकम, कैसे हैं आप?
3: ठीक है जी, आप सुनाएं।
1: बहुत अच्छे हैं, आपने फोन किया तो और भी खुशी हो जाती।
3: बहुत खुशी, हमें भी बड़ा खुशी हुई, काफी देर के बाद फोन मिला।

0: अच्छा, काफी देर से ट्राई कर रहे थे। क्या
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में नरेंद्र जी?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सड़क सबके लिए है, पैदल वालों के लिए भी है और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के लिए है, स्कूटर के लिए भी है, तो हमें एक दूसरे का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।
0: जी
1: खासकर जो पैदल चल रहे हैं या स्कूटर पे हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं।
0: भाई, उन्हें हमें ज़्यादा तरजीह देनी होगी
1: हाँ जी
0: जो
1: हाँ जी,
0: पैदल चल रहे हैं, और कोई किसी मूड में है, कोई किसी मजबूरी में जा रहा है, क्योंकि बारिश में अगर कोई पैदल जा रहा है
1: बिल्कुल
0: तो कोई ना कोई मजबूरी हो गई, या रास्ते में वो बारिश में फंस गया है जहाँ पहुँच रहा है। अगर उसने ऑफिस जाना है, कहीं किसी काम से जाना है, अच्छे कपड़े डाले हैं, हर कोई अच्छा कपड़ा डालता है, हर किसी की कोशिश होती है,
1: हाँ, जो
0: लेकिन
1: बाहर निकलता है जी अच्छा बन के ही निकलता है। हाँ
0: बीच राह में उसे बरसात घेर ले,
1: जी हाँ जी,
0: कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या है, वो उसे डर लगता है, वो अपने आप को बचाता है कीचड़ से, जो सड़क पर कीचड़ होता है।
1: जी,
0: पानी में जब मिट्टी घुल जाती है तो उसके छींटे कपड़ों पर लग जाते हैं।
1: बिल्कुल जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: अगर हम इसमें एक ही काम हम कर सकते हैं कि जो सामान्य हमारी गति रहती है वाहन की, उससे थोड़ा
1: बिल्कुल
0: स्लो कर लें,
1: बिल्कुल करना ही चाहिए जी, तभी काम चलेगा
0: अपना भी फायदा है, स्लिप भी नहीं होगा, आप
1: और
0: ब्रेक लगेगी
1: कोई
0: तो कोई
1: कोई
0: मुश्किल नहीं
1: नाराज भी
0: आएगी।
1: नहीं होगा।
0: कोई ऐसी घटना याद आती है बरसात के मौसम की?
1: हाँ सर, मैं इसके बारे में एक कहना चाहता हूँ, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए जो गाड़ी चलाते हैं, और सपोजिंग कोई सीनियर सिटीजन स्टिक लेके चल रहा है या पैदल चल रहा है, तो वैसे भी स्पीड कम करनी चाहिए और हॉर्न नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कई तो सीनियर सिटीजन को सुनता ही कम है, और स्टिक वाला जो है वो वैसे ही थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है यदि आपने जोर से हॉर्न मार दिया और जोर से पानी मार दिया उसके ऊपर, वो बड़ा हार्मफुल होगा।
0: जी बिल्कुल सही है,
1: इसलिए
0: बिल्कुल
1: गाड़ी
0: सही।
1: वालों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आस्था से नेगोशिएट करके पानी के बीच में से निकल जाएं उनके अराउंड।
0: जी बिल्कुल सही है। तो देखिए, वही सड़कें हैं, वही आना जाना है सबका, और आधी से ज़्यादा उम्र हमारी सड़कों पर निकल जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: मौसम कैसा भी हो, हर मौसम में सड़कें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं।
1: जी
0: तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, छोटी छोटी बातों को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र शर्मा जी, बात करने के लिए इस प्रोग्राम में।
1: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: वेलकम बैक दोस्तों। बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखे ख्याल, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए उनके बारे में आपने बताना है। एक तो पानी में गाड़ी को स्लो कर लें, जो सामान्य गति है उससे थोड़ा कम कर लें, और जो बातें आप समझते हैं कि ये सावधानियां होनी चाहिए उनका जिक्र आप इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। हेलो चंडीगढ़
1: भाई साहब को, यश कुमार वर्मा जी।
0: यश कुमार वर्मा जी, आप कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, आपको चलायमान रखती है ये,
1: इसलिए तो मैं रेडियो पे आ जाता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है, क्या कहना चाहेंगे?
1: यही कहना चाहता हूँ कि सभी जगह कह रहे हैं कि हम सभी, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे ऐसा मेरे साथ हो जाए तो कैसा लगता है। तभी हम सुधार कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं स्पीड पा रहा, स्पीड मारूँ और देखा जाए क्या होगा।
0: और एक बार अगर हम ये सोच लें कि मुझे कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ होता,
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
0: तो अपने आप बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं।
1: अनिल भाई, जैसे हम शादी पे जा रहे थे त्यौहार, तो तैयारी बरसात भी हर जगह नहीं होती।
0: हाँ, अपने आप अपने बाइक पर है,
1: 18 में हो रही है, 19 में नहीं हो रही।
0: हाँ,
1: दिक्कत है ना।
0: हाँ, बारिश भी खेल खेलती है।
1: हाँ, पहले होती थी, हर जगह बारिश होती थी, तो आदमी समय तैयार होकर चलता था, लेकिन अब यहाँ बारिश हो रही, 45 में बारिश हो रही, 48 में नहीं हो रही।
0: हाँ, बारिश भी टुकड़ों में होती है,
1: टुकड़ों में होती है।
0: बिल्कुल सही कहा यश कुमार वर्मा जी आपने, कि ये सब कुछ होने से पहले अगर मैं सोच लूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हेलो चंडीगढ़।
2: हाँ जी पुंज साहब, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर मैं काफी टाइम बाद फोन कर रहा हूँ, अशोक कुमार सेठी, सेठी चाट मिठाई।
0: हाँ सेठी साहब, क्या हाल है, क्या हाल है?
2: कृपया सर, मैं पहले
0: कैसा चल रहा है आपका चाट भंडार?
2: सर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पर ठीक है, कृपया है परमात्मा की।
0: कोई बात नहीं, हिम्मत बना के रखिए, ऊपर नीचे चलता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जल्दी से आज के टॉपिक के बारे में बता दीजिए।
2: पहले तो गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को
0: स्वतंत्रता दिवस
2: गणतंत्रता दिवस
0: जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहिए क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में।
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो आजकल तो बरसातें सर वैसी कम है हमारी सड़कों पे, जो हम लोग निकलते हैं, हम खुद भी देखो कई बार, ये जरूरी हम गाड़ी में निकल रहे हैं, कई बार हमें खुद भी निकलना पड़ता है।
0: जी जी जी,
2: तो छोट में मैं ये बात कहूंगा भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जैसे ही सब लोग हैं, हम ये ना समझे कि हम गाड़ी वाले हैं या हम पैदल वाले हैं, हम जैसे ही सारे हैं, हम खुद हैं, वो उस जगह पे हम खुद हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। मर्यादा का मतलब यह है भी हम अपने धैर्य को भी ठीक रखें, धैर्यवान रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। सड़क पे चलते हुए बरसात के मौसम में तो खास हो, कई बार जानवर भी होते हैं सर, उनको भी रास्ता देना पड़ता है और देना चाहिए,
0: और बारिश में बहुत बारिश हो तो दिखाई भी कम देता है।
2: हाँ जी,

हे गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी बट आई एम अ

0: तो साथियों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने बरसात में वाहन चलाने में बरतें सावधानी, राहगीरों का भी रखें ख्याल, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब अपने साथ ही अनिल पुंज को आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।
4: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
4: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
5: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
4: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
5: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
4: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
5: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
4: आकाशवाणी चंडीगढ़।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आप सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल को। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

से दो आपको याद दिला दें कि आज दिन में 11:30 पर कार्यक्रम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं चरस, धर्मवीर, धर्मात्मा, जूली और दाग। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप हमें 11:30 से 12 बजे तक फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660617। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर से नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में है। इस फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए गीत। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
4: क्या मैं बोलूं?
5: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनते हैं और आज जिन फिल्मों में से आप अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं चरस, दाग, धर्मवीर, धर्मात्मा और जूली। अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन करें। टेलीफोन नंबर्स हैं

0: 6165 और 266019। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी सर, गांव कुत्तोपुर सरसावा से निखिल।
0: जी निखिल जी, कैसे हैं आप?
1: जी ठीक है सर।
0: और बताइए, आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: जी सर बढ़िया लग रहे हैं, सुनते रहते हैं। जी
0: तो आज कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: सर आज आप सुनवा दियो धर्मवीर का हम बंजारों की बात मत पूछो। जी
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर धर्मवीर फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: थैंक यू।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं चरस, दाग, धर्मात्मा और जूली। इन फिल्मों में से अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: सर मैं सूरज बात कर रहा हूं, तहसील शिमला से।
0: जी सूरज जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप बताओ?
0: बहुत बढ़िया है। तो बताइए कैसा मौसम है? और
1: सर आज तो बादल लगे, और मैं ना सर आज एक चीज बताना चाहूंगा सर आकाशवाणी के लिसनर्स को, आज हमारे ठियोग का स्वतंत्रता दिवस है।
0: अच्छा, आपका अलग होता है?
1: हाँ जी सर, एक्चुअली तो हमारा 15 अगस्त को तो सर पूरा देश आजाद हो गया
0: था ना। जी,
1: लेकिन सर 16 अगस्त 1947 को ना हमारे ठियोग रियासत में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, जिसके नेता सूरतराम प्रकाश जी थे, और उनके नेतृत्व में 8 से 9 सदस्य नेताओं का एक समूह बना था जो जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया था। जी सर,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत बढ़िया सर, मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ।
0: अच्छा, फुल एंजॉय करते हैं।
1: गुजारिश करना चाहूंगा सर आपसे,
0: गुजारिश इस कार्यक्रम में नहीं किसी और प्रोग्राम में हम लोग आपसे बात करेंगे।
1: सर मैं एक्चुअली मैंने इतना ही बोलना था कि इस प्रोग्राम को आप अगर कोशिश कर सकते तो इसको 1 घंटे का कर दो प्लीज।
0: जी अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है।
1: हाँ जी सर,
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अब कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: सर धर्मात्मा का ये बजा दो आप। क्या खूब लगती हो
0: जी,
1: बड़ी सुंदर दिखती हो।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर धर्मात्मा फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कृष्ण कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ जी।
0: सुदर्शन कुमार गुप्ता जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शिमला, शिमला, टूटू शिमला, हिमाचल प्रदेश
0: जी। शिमला से आप बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको, थोड़ा सा बताइए।
1: बहुत ही बढ़िया लगते हैं सर। मैं तो रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ।
0: अच्छा,
1: 2014 में रिटायर हो गया था। अब गाने लगातार पहले भी सुनते थे, अब तो बिल्कुल रेगुलर फुल टाइम हो गए।
0: अच्छा, कहाँ से रिटायर हुए हैं आप?
1: मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से।
0: हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से।
1: हाँ जी
0: जी। तो
1: आपके अनिल पूंजी सब जो भी अनाउंसर हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम और उनका जो पेश करने का अंदाज है ना, ब्यूटीफुल, वंडरफुल
0: जी। जी तो अब बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: चरस फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, आजा तेरी याद आई।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर चरस फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जी नरेंद्र शर्मा, सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ जी।
0: जी नरेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है जी, शुक्रिया।
0: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम लगातार सुनते रहते हैं?
1: हाँ जी, सुनते भी हैं जी, पार्टिसिपेट भी काफी करते हैं
0: जी। जी
1: हाँ जी।
0: तो क्या काम करते हैं आप?
1: मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ जी।
0: अच्छा,
1: भाखड़ा डैम से।
0: तो थोड़ा बताइए अपनी जॉब के बारे में, किस तरह की जॉब थी आपकी और जॉब के बाद आपको कैसा लग रहा है?
1: जॉब का ऐसे था जी, भाखड़ा डैम इस एरिया का सबसे बड़ा डैम है नॉर्दर्न रीजन का, और
0: जी
1: इंडिया का भी नंबर वन है। और इसने 1963 से जो चला है, 63 थे
0: जी,
1: पंजाब हरियाणा राजस्थान जे एंड के, इस एरिया में सारी ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसकी बिजली की वजह से भी आया है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और नरेंद्र जी, चुनौतियां क्या रही नौकरी के दौरान आपकी?
1: चुनौतियां जी ज्यादा कंस्ट्रक्शन में थी हमारे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमने अमेरिकन एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे
0: जी,
1: उनके साथ हमारी टीम्स काम करती थी, देवर ट्रेंड फुली। चुनौतियां इसमें ज्यादा, एक दो दफा कुछ मिस है जरूर दो हुए
0: जी,
1: जैसे किसी, जैसे गेट होते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए, वो गेट थोड़ा सा ठीक नहीं बैठा, उसकी वजह से पानी लीक करके कुछ गैलरी में भर गया। तो उसकी वजह से दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज सम टाइम इन 1959 फ्लड सीजन में, आजकल के दिन थे अगस्त 19 के करीब की बात है। उसकी वजह से सेटबैक से एक महीना, मैं एक साल पीछे चला गया था
0: जी। और आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: मोस्टली सारे गाने काफी सुनते हैं जी आपके, कन्वर्सेशन रेडियो प्रोग्राम जो होते हैं मोस्टली, स्नेह मित्रों के बड़ा अच्छा होता है, आप बड़ा अच्छा कंडक्ट करते हैं
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: मैं मोस्टली सॉन्ग्स वाले प्रोग्राम जो दिल्ली से आते हैं वो भी सुनता हूँ, और आपके जो सुबह सुबह आते हैं खबरों वाला, 9:30-9:30
0: जी, आज का अखबार।
1: आज का अखबार, हाँ जी, वो भी अच्छा होता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नरेंद्र जी। अब गीत कौन सा सुनवाएं आपको?
1: आप मुझे जूली का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना?
1: दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए।
0: जी बहुत ही बढ़िया गाना है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर जूली फिल्म का ये गीत।
1: एक रिक्वेस्ट और थी।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सेक्टर 9 पंचकूला से रमेश गुलाटी की ओर से रमेश वीर जी को स्वेरवाड़ी नमस्ते है जी।
0: नमस्ते है जी स्वेर वाली, कैसे हैं आप गुलाटी साहब?
1: बहुत बढ़िया कपूर साहब, मैं तो शिकंजवी बना रहा सी मिठी ते मक्खियां उड़ा के।
0: वाह जी वाह, मक्खियां उड़ा के।
1: ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 2011 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਰਬੂਜਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ
0: ਜੀ,
1: ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਿੱਟਣੀ ਪਏਗੀ।
0: ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਪਕਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
0: जी जी
1: जब से फोनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं, एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर
0: जी, तो समय समय पे आप रिकॉर्डिंग्स भी सुनते रहते हैं?
1: मैं सारा दिन बस आपके संग ही रहता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गाना कौन सा सुनवाएं आप?
1: एक ही फिल्म बची है शायद से, दाग फिल्म जी।
0: जी जी,
1: तो आप चाहे मार उठे या बाबा या बीवी, आपका संग तो मैं छोड़ नहीं सकता।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
2: ए, क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस वर्ष उद्यान में

0: सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हेमलता की आवाज में गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष

मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: ये चौपाइयाँ आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया मन भाई हेमलता और साथियों की आवाज़ें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की।

0: गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:00। कार्यक्रम सदाबहार नगमे होगा दिन में 2:30 पर। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 3:00। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक पुराना मर्ज नया इलाज पेश किया जाएगा, रूपांतरण व निर्देशन विनोद रस्तोगी का।

कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा पेश की जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में 8 बजे ब्रिजमोहन की लिखी हास्य नाटिका सुनिए कंगन। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। कार्यक्रम चित्रलोक होगा 7:15। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा कानून और न्याय मंत्रालय।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री राखी पर केंद्रित होगा और रात 10 सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग करने की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: करनाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश भर में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री स्वयं भी बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। यात्रा का उद्देश्य जन जन तक देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का संदेश पहुंचाना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक

सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण, समावेशी नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनकी वचनबद्धता भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका अतुलनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज करनाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया और कहा कि उनका जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा की भावना सदैव देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम आज से लागू हो गए हैं। योजना के तहत पात्र छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी घोषित करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। ये योग्य करदाताओं को एक तय कर या फीस का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महारानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश का महान व्यक्तित्व बताया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि महारानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार ई आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि हुसैनीवाला हैरीटेज कॉम्पलैक्स का काम शुरू हो गया है और इस प्रोजैक्ट से 24.99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोजैक्ट साढ़े महान शहीदों के सन्मान लिए यतन है और इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों लिए आजादी घुलाटिया के शानदार विरसे सुरक्षित रखना है। कल आजादी दिहाड़े मौके फिरोजपुर च राज पदरी समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि सरकार दा मुख उद्देश हुसैनीवाला विखे विरासती खेतर नूं विकसित करना है अते इस विरासती कॉम्पलैक्स दे निर्माण नाल सैर सपाटे नूं वी हुलारा मिलेगा। प्रोजेक्ट दीआं विशेषतावां दा वेरवा दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट विच कंपलैक्स लई इक शानदार विरासती एंट्रेंस गेट शहीदां दे जीवन नूं समर्पित दोवें पासे इक विरासती गलियारा कंध चित्र दे नाल नाल पार्कां ते यादगारी खेतरां दा सुंदरीकरण शामिल होएगा। कॉम्पलैक्स विच मुहैया करवाईआं जाण वालीआं होर सहूलतां ते चानणा पाउंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉम्पलैक्स विच बच्चिआं लई इक समर्पित खेड खेतर बजुर्ग नागरिकां लई मनोरंजन ते आरामदायक थावां ते हर जरूरत दा ख्याल रख्या जाएगा। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने बीते कल स्वतंत्रता दिवस के मौके ते शाम नूं पंजाब लोक भवन चंडीगढ़ विखे रवायती एट होम समारोह की मेजबानी की थी। इस मौके सबना ने राष्ट्रीय एकता सद्भावना ते भाईचारे की भावना नाल एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। समारोह विच हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अशीम कुमार घोष पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण पार्लीमेंट मैंबर श्री मनीष तिवाड़ी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का गीत। आवाजें हैं अमित कुमार, कंचन और साथियों की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हथकड़ी फिल्म में आशा भोसले और साथियों को। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: हथकड़ी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओ, न सिर्फ हम सफ़र यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफ़र होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गज़ल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफ़र है, वो कौन सा हम सफ़र है श्रोता जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रॉल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुँह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई, ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इंतज़ार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारे श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो,

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की बारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नज़र में ही दिल में उतर जाता है। पहली नज़र का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है, और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताज़ा करती हैं और भीगे हुए। और उन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है, और ये एक खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन।

अरुण गोविल और ज़ीना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था, आप सुन रहे थे सावन कुआने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज़ थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

गोविंदा और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में श्रोता? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

सारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूँ और वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोता, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वादे बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में जगह वृंदावन गए, वहाँ किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

सावन की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओ, ये कार्यक्रम सुरीला सफर, आप सुन रहे थे नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी। इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

त्रिवेणी में आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

0: जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का PR भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, पूछ भी उसी की होती है। और अगर आप अपने कामों के बारे में न बताएं, तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ, और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

जहाँ जरूरी हो वहाँ तो जरूर करें प्यार, लेकिन सभी से कीजिए दिल से प्यार। इस संदेश के साथ अब दीजिए आज के त्रिवेणी से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता

0: पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

मुख्य औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम

0: राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम

0: हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल सुरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

संगीत सम्राट तानसेन, इस फिल्म में मुकेश की आवाज आपने सुनी। शैलेंद्र के बोल थे एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज, हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंग

0: गतिया है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है?
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें। अब कहां
2: जाएं हम? फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मिलन फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष शुक्रवार से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

पेशे खदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरू सुल्तान पर एक लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयनंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के, का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनतार अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एस एच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोहरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत। ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हम

0: अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
1: आओ भाई डॉक्टर।
0: अरे जल्दी आओ ना।
1: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
0: क्यों?
1: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी सर फिनार गई।
0: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
1: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है टूट टूट कर रहूं।
0: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
1: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह को आ रहा है। आ, आ, आ, आ, आ, आ, कितना चाहती थी मुझे।
0: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
1: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
0: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
1: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है। कोई कोई सी चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
0: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
1: अरे यही तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देते। अरे भाई उतार चल।
0: हाँ उतार चल। हाँ
1: भाई तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
0: सो तो
1: बोलो ना। हाँ तो ऐसा करो तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
0: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
1: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
0: बताओ।
1: अरे वाह।
0: देखो भाई तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
1: जरी के काम की साड़ियां?
0: अरे इतना ही नहीं साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
1: साड़ियां और जेवर? नहीं नहीं भाई ये तो बहुत महंगा उसका है।
0: महंगा?
1: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदार चंद भाई उदार चंद कोई सस्ती तरकीब सोचो।
0: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
1: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई साड़ी जेवर पर कमाई समझो उसकी आफत आई।
0: तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
1: क्या मतलब?
0: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई।
1: हाँ तो
0: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
1: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई है तो गारंटी नहीं? अरे भाई तुम जानते नहीं हो अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
0: अच्छा जी अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
1: एक ही बार तो की थी।
0: हाँ एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
1: नहीं नहीं आया ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदार चंद कोई और नुस्खा सोचो।
0: नहीं नहीं भाई मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
1: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
0: अच्छा?
1: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
0: ठीक है मैं दुलारी को भिजवा देता
1: हूँ। देखो भेजना जरूर। चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी जेवर शादी आया आया आया आया क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आया
2: चाचा जी।
1: हाँ दादी तुम आ गई।
2: क्या बात है मुझे बताइए। चाचा जी मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
1: अरे वाह शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी
1: कैसे ही पढ़ा दिया।
2: चाचा जी
1: चुप रहो।
2: रूपा किसी को चाहती है?
1: किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर
1: दीजिए।
2: रूपा देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारे, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।

0: रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो।
1: लेकिन पिताजी की जिद क्या गई, तू क्या कर पाएगी?
0: कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
2: प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
0: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया रूपा।
2: अरे क्या हुआ मेरी बेटी को?
0: बदकिस्मती।
2: अरे तू नहीं बोलो तो
0: दुर्भाग्य।
2: अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ
0: रूपा बहन?
2: क्या हुआ उसे?
0: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
2: अच्छा, तो
0: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
2: अरे,
0: मेरे लिए एक ही रास्ता है।
2: क्या, क्या?
0: मौत।
2: और वो नीचे कूद गई?
0: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
2: क्यों, क्यों?
0: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
2: गई। मूर्छित हो गई। मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
0: जल्दी जाइए,
2: तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी जा डॉक्टर।
0: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा।
1: क्या कहा पिताजी ने?
0: घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
1: डॉक्टर?
0: हाँ,
1: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
0: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
1: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा।
0: चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
2: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
0: चाचा जी, रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
2: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
3: मैं डॉक्टर बोगस चंद।
2: हाँ हाँ, बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
3: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
4: और मैं हूँ कविराज
2: मूढ़ानंद,
4: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
5: है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमक सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहू तो मुर्दे में जान डाल लू और चाहू तो जिंदा को।
2: अरे भाई, मैंने कहा अपने मुमिया मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
3: क्या तकलीफ है आपको?
4: मुझे अपनी नाड़ी दिखाइए।
5: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
2: सावान के मेरी बेटी नहीं, उसकी सहेली है।
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया? नॉनसेंस,
4: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता सकते।
5: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
2: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए। आइए
2: आइए, वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
3: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
2: गुड, वेरी गुड।
3: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
2: क्या बकते हो जी? पापा, मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
4: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
5: हमने इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
3: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
4: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
2: अच्छा,
4: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
2: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले, तब तक मैं बेटी को देख लूं।
3: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
4: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
5: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
3: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
4: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियां मारा।

0: करते हैं।
1: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है?
2: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
0: अरे भाई,
2: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
0: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई जान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ, एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
2: अच्छा,
0: अब धोबी चंगा हो गया।
1: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
0: जानवरों डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
1: गधों का इलाज करता हूँ।
2: लीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
3: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
2: देखिए, रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं।
0: अच्छा,
2: साथ से या साथ रोग भी कविराज मूलानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता।
3: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
2: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
1: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
2: और अपनी भी तो कहो
0: सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा। हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जाहिर और ठग हैं।
2: हाँ बिल्कुल ठीक।
0: अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर्फ मैं हूँ, खानदानी हकीम जी। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
3: मगर हकीम साहब, मैं नहीं, मेरी बेटी है।
1: तो क्या हुआ? एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
2: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
1: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
2: देखने जाते
3: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
1: और
3: तशरीफ ले जाइए
1: के लिए दवा।
3: पाला पड़ा।
4: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
3: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी,
3: लगता है मेरी रूपा का मर्ज कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी, आप कहें तो मैं डॉक्टर को ले आऊं।
3: बेटी तू क्यों चलाएगी?
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
3: अरे तो जाना, जा मेरा मुंह क्यों ताक रही है, जाकर जल्दी से बुलाना। और देख बेटी, बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में। हाँ,
4: मैं सब पक्का कर लूंगी। हाँ,
3: समझ आ रहा
4: है। अभी गई और अभी आई।
3: बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी लाना। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
5: अरे भाई, डॉक्टर बोगस चंद ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
3: हाँ भाई, बेहोश पड़ी है।
5: अरे भाई, डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
3: क्या करूं, बताओ बताओ, तुम्हें बताओ ना।
5: उसके कान में धीरे से कहो,
3: क्या, क्या
5: बेटी, देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
3: अपनी बकवास बंद करो उदास चंदा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
5: अरे भाई, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो,
3: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं? बोलो करते हो नहीं? बोलो।
5: हाँ, तो हूँ।
3: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे भी आना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
5: हाँ, बोलो।
3: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।

0: मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
0: अब ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ, जाओ जाओ दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
2: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
3: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
2: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइया हैं। कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
3: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर
2: दी तो। रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें।
3: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करूंगा।
1: अरे अरे बेटी, दुलारी दुलारी रूपा की हालत
2: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: हाँ, अरे ये डॉक्टर है
2: क्यों?
1: एकदम छोकरा
3: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
3: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
1: अच्छा,
3: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
3: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
3: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
3: जी हाँ।
2: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब चल कर उसे देख लीजिए।
3: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
2: मगर वो तो बेहोश है।
3: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है। जाकर मरीजा को ले आओ।
2: अभी लाई, अभी लाई।
1: कमाल है, वाह वाह वाह। आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
3: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
3: जी,
1: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है। देखिए ऐसे बिल्कुल देख से चल नहीं पाती।
3: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
3: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
3: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: चाचा जी आइए, हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
2: मेरी प्राण
1: दुलारी,
2: मेरी आंखें तुम्हें
1: डॉक्टर क्या सर पर बोल रहा है।
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
1: डॉक्टर साहब
3: जी,
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
3: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा,
3: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जाने।
3: देखिए दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
3: जी हाँ
1: जी।
3: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
3: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत
1: है। शादी?
3: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
3: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
3: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तो फिर इसका इलाज क्या है?

0: क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
2: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
1: क्या क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
2: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दें?
2: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें, बताइए।
2: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
2: जी हाँ, मेरा मतलब है, रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
2: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
0: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी? नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
2: हाँ, ये समस्या।
1: वही वही ना बात।
0: चाचा साहब, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
2: वो कैसे?
0: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
0: अरे नहीं। लेकिन वेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
2: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
0: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती मानिए, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं भी रूपा को लाती
1: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
2: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
1: गुड गुड।
2: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही सही, बिल्कुल सही।
2: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
0: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छा बेटी, इतना जवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
0: क्या ये सच है पिताजी?
1: हाँ हाँ, पसंद है।
0: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
0: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो, अरे सुन तो बिलाली, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
0: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं हो ना?
0: नहीं, लेकिन
1: बेटी लाओ तो अपना हाथ जरा ऐसे। हाँ, और भाई तुम भी हाथ।
2: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा रहा है, शर्माती क्यों? ला बेटी हाथ दो। हाँ, जी लो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
0: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
1: ये तो ठीक है।
3: जजमान, मैं कराऊंगा ब्याह।
1: लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है, जो है सो जजमान है। कहाँ है ये संसार, जो है ये रंगशाला है, जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं।
2: तो जजमान, वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
1: जी हाँ, बिल्कुल।
2: तो ठीक है, तुम ठीक है।
3: तो बच्चा लोग, अब तुम जरा इसके आसपास में फेरे लगा लो, जो है तो।
2: मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरी। समझ लो यजमान, हमारे भी पल गई है। सदा शिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान, अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें, जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
1: पंडित जी, मेरी बात तो।
0: चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
1: पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ।
2: बोली
1: ये जोड़ी जुग जुग जी।
4: भाई वाह, यानी

0: मांगनी है और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर लाया।
1: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम बैठो।
2: अच्छा अच्छा जी मैं
1: बोले
2: तो अब हमारी दक्षिणा तो मेरे जाए जो है जो
1: कैसी दक्षिणा शादी तो
3: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
1: आया आया आया आया लीजिए। और यहाँ पे चलिए जय जय हो जजमान की। आए ये क्या केवल पैसे जो। अरे राम राम जजमान एकदम पक्की शादी कराई है। कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए।
4: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो नहीं तो उसे भी लौटा।
1: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान। मैं जाता हूँ।
5: अब हमें भी आज्ञा दीजिए। चलो रूपा
3: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
1: ये क्या मजाक है। देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
0: अरे इसमें बनाने की क्या बात है। अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद तो उसे विदा भी कर दो।
1: कैसी शादी कैसी विदा। अरे उदासन उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
0: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर है। यानी कि
5: अब हमें क्या मालूम। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
1: अरे अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे उदास जान।
0: हाँ भैया कृपण चंद गए तो जाने तो क्या हुआ।
1: उदासन के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। उदासन ये डॉक्टर था डॉक्टर। मेरी लड़की को ले भागा उदासन। मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। दुलारी से पूछ
0: लो दुलारी क्या बात है।
3: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है।
0: ठीक है
3: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं
1: थे।
3: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
1: नाटक।
0: भाई कृपण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
1: भगवान अरे ये क्या हो गया। मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। अरे अरे भाई उधार चल।
0: हाँ कृपण चल।
1: अरे संभालो
0: हो गया।
1: अरे चक्कर आ रहा।
0: चक्कर चक्कर
1: अरे नहीं अरे चल अरे चल।
6: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक, थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है, पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड़ आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है। और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी,
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के, एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर
1: जी, सुंदर नाम है।
2: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
2: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह।
2: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
2: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
2: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी।
2: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी।
2: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी।
2: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था
1: जी,
2: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने

0: पेड़ के नीचे पड़ते थे।
1: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था, और
0: जी
1: वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर,
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी,
0: अच्छा
1: और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
0: जी
1: एक
0: जी
1: धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था,
0: हाँ
1: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गाय हैं, भैंसे हैं,
0: घुस
1: बकरियां
0: जाते
1: हैं,
0: थे।
1: वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
0: साफ कर रहे
1: साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग,
0: जी, तो
1: जिसको
0: यहां शिक्षा की असली ताकत समझ में
1: नहीं,
0: आती
1: मेरे
0: है।
1: समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं
0: बिल्कुल
1: अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं,
0: जी
1: पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
0: जी
1: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका, भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
0: बिल्कुल
1: वर्तुल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है। तो
0: बिल्कुल
1: उसका फायदा ये हुआ कि वहां कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था,
0: जी
1: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे, और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
0: खेती
1: खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे, और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं, वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है, इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं।
0: जी
1: मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
0: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
1: यस
2: लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम, लिखो पढ़ोगे।

अजीब से बोलो क्या होता है?

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादूर।
0: बन के बाहर।

0: बावन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर

0: है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है,
1: okay.
0: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोंच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत। बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
1: यस।
0: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
1: क्या बात,
0: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे। वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
1: जैसे
0: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
1: ओहो, पूरी रात,
0: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा है कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
1: बचपन में याद हो गए थे भारूड?
0: बहुत सारी भारूड, मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
1: अरे वाह,
0: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड़ जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा
0: जी। एक नई दुनिया खुली,
1: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
0: ओहो,
1: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में, बलभीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
0: बहुत सही बात है।
1: उसके बाद फिर औरंगाबाद, संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है। पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो
0: जी,
1: तो वो और भी बढ़ गया। वहां यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी

0: बात होती है, 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहां, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शोले याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये,
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में, अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे चढ़ रहा है, कोई जूते से सर

0: खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे टिकट निकलने वाले, तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
1: जी,
0: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
1: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
0: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
1: लड़की बने थे?
0: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
1: ओ,
0: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
1: जी।
0: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला।
1: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
0: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, 2-3 साल गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर, ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में, तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे
1: जी जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया, और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी, यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: थे।
0: जी, जी,
1: आपने
0: जी,
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी,
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना,
0: मुगले आजम का गाना सुनते हैं,
1: जब प्यार किया तो
0: डरना किया, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी।
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी, तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम

0: उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
1: जी,
0: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
1: वाह,
0: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
1: जी।
0: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
1: वाह वाह।
0: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
1: ओ ओ ओ।
0: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिन कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन
1: जी,
0: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह।
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
1: ओहो
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: ये
0: प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक
1: जी।
0: वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ। तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस करते रहे, पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहाँ किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था
0: जी,
1: एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी, जी
1: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए होंगे।
1: तो मैंने तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह।
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली
0: जी।
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला।
0: तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लेके गए,
1: एक सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी, अब फोक से तो

0: ही भोग का होता आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेद सा गोंधड़ी एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली वो
1: पैसे
0: स्टेज पे
1: फेंकते थे।
0: इतने पैसे फेंकते थे।
1: वाह,
0: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के,
1: पेट में लगा।
0: हाँ, पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
1: अरे बाप
0: उसके
1: रे।
0: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है। मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको
1: जी
0: काकू बोलते थे। अब तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था। अब
1: हाँ
0: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए।
1: जी,
0: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
1: मॉडल भी लेके गए।
0: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
1: अनुभव
0: और
1: है।
0: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
1: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
0: ए आर रहमान का लगाइए
1: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
0: या
1: दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: करने के साथ-साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्माण क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्वेरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवायम ने किजूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडी खेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया। इकाई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बांगल नदियों के उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 408 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में बीवी नंबर 1 इस फिल्म का।

लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में बॉलीवुड हॉलीवुड। इस फिल्म का गाना बोल है अजय के और संगीत है संदीप चौटा का।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Depression क्या है? जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन किशोरावस्था यानी

एडोलेसेंस या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलित होना, गर्भावस्था और अनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है, दैट मीन्स हेरिडिटरी। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहना तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियां धीमी होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो DSM-5 यानी परीक्षण तकनीक के अनुसार इसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द एक्सेट्रा। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोगी चिकित्सा से मिल सकती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध है। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिक्स ट्रीटमेंट। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचय या आपको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। इस समस्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। सुबह शाम टहलने जाएं। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने न सुने। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बात किसी विशेषज्ञ या फिर साइकोलॉजिस्ट से करें या फिर काउंसलर से करें। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्ते से गुजरे। अगर आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत खुश हो। सिर्फ एक्टिंग करने में क्या जा रहा दोस्तों, थोड़ी सी एक्टिंग आपके लिए, खुद के लिए भी करिए। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता। हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाए। हो सके तो कुछ कोर्स ज्वाइन करें। योग का सहारा लें और प्राणायाम रोज करें। राइट ब्रीथिंग विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। रात में सोने के एक घंटे पहले टीवी बंद कर दे और अपना मोबाइल भी बंद करें। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचें। हैव अ डीप एंड नाइस स्लीप। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश

अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यूं तो डिप्रेशन की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें और जितना हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन कुछ बिंदु है जो बहुत महत्व रखते हैं। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनती है, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना, ऐसे फैसले अकेले न करें। हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थी डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके।

हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थे डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

0: शाम सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण संस्थान है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या सिनेमा का। आप शिक्षाविद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं, 400 से ज्यादा आपने शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्में लिखी, निर्देशित की और निर्मित की हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर पीएस नरूला। प्रोफेसर नरूला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम सुहानी कार्यक्रम में।
1: रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका।
0: इससे पहले कि हम आपकी जिंदगी के सफर की कहानी आगे बढ़ाएं, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के अंश जो पिछले प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शेयर की थी, वो हम उन श्रोताओं को सुनवा दें जो किसी कारणवश हमारा पिछला कार्यक्रम नहीं सुन पाए।
1: जी हाँ,
0: उनके लिए एक रिकैप।
1: रमेश जी, एक्चुअली मेरे फैमिली सारी डॉक्टर्स की है, फादर मेरे डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैंने फिल्म मेकिंग में जाना है, फिल्में बनानी है। लेकिन मेरी बात को उस टाइम कोई नहीं समझ सकता था, तो जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो भी मेरे फादर के दोस्त थे, उन्होंने बोला इतने अच्छे नंबर आए हैं, अब ये आर्ट्स नहीं लेगा, लिटरेचर नहीं पढ़ेगा, ये साइंस ही पढ़ेगा, इसको साइंस में लगाओ। तो फोर्सिबली मेरे को साइंस पढ़नी पड़ी। मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से फर्स्ट डिविजन में
0: जी,
1: और इमीडिएटली आई गॉट ए जॉब विद इन नो टाइम। लेकिन मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, एक छोटा सा कैमरा परचेज किया और मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी, उस टाइम 8mm की फिल्म होती थी, वो बनानी शुरू कर दी, छोटी छोटी फिल्में खुद ही। और थिएटर में भी मेरा शौक था, मैं सिखाता भी था और कॉलेज में भी आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोटोग्राफी क्लब, फिल्म क्लब एंड थिएटर। कॉलेज से लॉन्ग लीव ली और बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे जाके बिकॉज आई वॉज इन टच विद सो मेनी पीपल, तो मैंने शुरू किया, तो लोग कहते थे अगर आपको डायरेक्ट करने के लिए फिल्म चाहिए तो 2-3 साल लगेंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विद इन ए मंथ्स टाइम मेरे एक ओल्ड एसोसिएट थे, मेरे को जानते थे, वो मेरे को मिले। एक्चुअली मुलाकात भी हमारी लोकल ट्रेन से, मैं उतर रहा था, वो भी लोकल ट्रेन से उतर रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा बॉम्बे आ गया हूँ, अभी फिल्में डायरेक्ट करनी है, तो बोले मेरी फिल्म डायरेक्ट करोगे, मैं कहा जरूर करूंगा। तो स्टेशन के ऊपर ही हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, अच्छा कल होटल में आ जाओ तो हम डिसाइड करते हैं
0: जी।
1: मैं चला गया और उसके बाद मेरी पहली फिल्म शुरू हो गई, शहीद उधम सिंह। एक गाना था जो टाइटल सॉन्ग था, तो वो मैंने ही लिखा था, लिखा भी कैसे कि हम लिखवा रहे थे किसी और से, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था किसी को भी, तो उसके बाद में मेरे प्रोड्यूसर बोले कि आप लिखो। मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट तो लिख सकता हूँ, लेकिन कभी पोइट्री का मेरे को इतना अभ्यास नहीं है कि मैं लिख सकूंगा। तो मैं घर आ गया, घर आके मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम में मेरे को याद आया उसका जो मुखड़ा, तो मैं इमीडिएटली

0: ऐसे ही बाहर आ गया और आके का पेन और कागज उठाया, उस पे मुकरा लिखा
1: जी,
0: शहीदी यार दी सानू ललकार दी, तर सीस तली चलो यार दी गली, आज अनख वतन दी वंगार दी। तो सबको बड़ा मुकरा पसंद आया कि बहुत अच्छा है, आप इसका पूरा गाना लिखो। अब सोचा ये गाना कौन गाएगा, तो हमने सोचा रफी साहब को अप्रोच करते हैं। इस फिल्म के लिए मेरे पास बजट बहुत कम था, हम 10 रुपए भी खर्चते हुए सोचते थे खर्चे कि ना खर्चे। शूटिंग करते वक्त भी देखते कि पास में कोई गुरुद्वारा है वहाँ लंगर ले लें, यूनिट भी वहाँ बैठ जाएगी। तो इस तरह से हम वो फिल्म बना रहे थे बड़े पैशन से। तो रफी साहब से मैंने कहा, रफी साहब मेरे पास बजट नहीं है आपको गाने के लिए देने का। तो रफी साहब हंस पड़े, ऐसी बात है तो आप किसी और यंग लड़के से गाना गवा लीजिए। मैंने फिर वहाँ अपना प्रोफेसर का एटीट्यूड यूज किया, मैंने कहा सर गाना तो रफी साहब ही गाएंगे, अगर आप नहीं गाओगे हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं साउंड ट्रैक चला दूंगा खाली और साथ में लिख दूंगा कि हमारे पास बजट नहीं था रफी साहब के लिए, आप ऐसे ही सोचो कि रफी साहब गा रहे हैं। वो बड़ी जोर से हंसे, कहने लगे प्रोफेसर तुमने यार मेरे को जीत लिया, अब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई वाज सरप्राइज, सब लोग भी सरप्राइज थे, कहते नहीं आप शहीद के ऊपर फिल्म बना रहे हो और गाना भी बहुत अच्छा है, सरदूल कुवातरा का म्यूजिक था, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो मैं कल इसको रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद मैंने रफी साहब के और बहुत गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन हम पूरी पेमेंट करते थे।
1: प्रोफेसर साहब ये तो थी वो बातें जो आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की, उनके कुछ अंश हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए। आपने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, जैसे आपने शहीद उधम सिंह दी, वैसे ही बब्बू मान की आपने जो फिल्म लिखी हशर, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को।
0: रमेश जी बहुत पहले की बात है, दो यंग लड़के जो 10th क्लास में पढ़ते थे मेरे पास कोई रेफरेंस लेके आए और बोले हमने फिल्म मेकिंग सीखनी है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अभी तो इनकी एज बहुत कम है, छोटे हैं। तो एक का नाम था गौरव त्रिहेन, एक था मनोज पुंज, दोनों दोस्त थे। तो मैंने कहा अभी आप रुक जाओ थोड़ी पढ़ाई पूरी करो फिर उसके बाद आ जाना। कहते नहीं सर हमें आप चांस दीजिए। तो मैंने 2-3 दिन उनको एग्जामिन किया, लगा कि ये इनमें वो लगन है जो मेरे में थी। तो उसके बाद वो 6-7 साल मेरे साथ असिस्ट करते रहे।
1: गौरव त्रेहन और मनोज पुंज, उनकी बात की आपने, मनोज पुंज वही जिन्होंने शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह डायरेक्ट की गुरदास मान जी को लेकर।
0: हाँ ये दोनों लड़के मेरे साथ सीखते रहे। उसके बाद मैंने बोला अब आपने सीख लिया अब काम शुरू करो आगे। तो गौरव त्रेहन को म्यूजिक का शौक था, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री अडॉप्ट कर ली, स्टूडियो बनाया। और मनोज को डायरेक्शन का शौक था, वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे जाके उसने गुरदास मान जी की फिल्में डायरेक्ट करनी शुरू की, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, देश हो प्रदेश और वारिशा, 3 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मनोज पुंज उसमें थे, मैं भी बैठा था। तो लोगों ने क्वेश्चन किया मनोज पुंज से, आर यू फ्रॉम पूना इंस्टीट्यूट, तो वो बोला आई एम फ्रॉम प्रोफेसर नरुलाज इंस्टीट्यूट। तो सब लोग प्रेस वाले मेरी तरफ देखने लगे कि जानते तो सभी थे मेरे को प्रेस, क्योंकि शुरू से ही जब मैं स्कूल में था तब से ही मेरा पेपर्स में नाम आना शुरू हो गया था
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद शायद बहुत बड़ा आर्टिकल एक ट्रिब्यून में छपा था आज से कुछ 40 साल पहले, बैक पेज पे हाफ पेज पे, जिसमें सारी मेरी लाइफ के बारे में लिखा था कौन कौन सी फिल्में की। सो गौरव त्रिहेन ने फिर उसके बाद फिल्म डायरेक्ट करनी थी, क्योंकि मैं अपने असिस्टेंट को बोलता था तुम आगे आओ खुद करो, अगर पीछे ही रहोगे असिस्ट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा सर ऐसे सब्जेक्ट है, स्टोरी आइडिया मेरे पास है। तो हमने कहा ठीक है हम करते हैं। तो उसका मैंने सब्जेक्ट लिखना शुरू किया हशर, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी दी बब्बू मान को, 15 दिन हमने वर्कशॉप लगाई स्क्रिप्ट के ऊपर, उसने भी बड़े दिल लगा के और बड़े कोऑपरेटिव वे से काम किया। और ये फिल्म आपको तो पता ही है कि लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, आज की डेट में भी इस फिल्म को देख के बोलते हैं कि ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है
1: जी। बब्बू मान की आपने बात की, तो एक्टिंग के लिए किस तरह से आपने उनको तैयार किया?
0: एक्चुअली स्क्रिप्ट के साथ उसकी सारी डायलॉग डिलीवरी करते थे कि किस तरह से बोलना है, क्या करेक्टर है, क्योंकि अगर एक्टर को करेक्टर समझ आ जाए और अपने करेक्टर में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट में जो क्लाइमैक्स भी था वो बड़ा डिफरेंट था, उसका क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसी लव स्टोरी शायद उस टाइम में, ये 2008 की बात है जब फिल्म रिलीज हुई, तो उसके बाद और फिल्म बनी पंजाबन, वो भी लिखी, उसके बाद इडियट बॉयज थी वो भी की। और
1: हशर टाइटल जो था वो दिमाग में कहाँ से आया आपके?
0: एक्चुअली क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी ना गौरव के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल थी, क्योंकि ये लोगों को अगर मैं बताऊं, घर पे मेरे आते थे तो रात को 11-12 बज जाते थे, मैं कहता गौरव अब जाओ सोना, मैंने भी कहता नहीं सर काम बाकी अभी और कर ले, मतलब ऐसे कम लोग मैंने देखे हैं। और अगर मैं बताऊं जब मेरे पास आया था साइकिल पे आया और उसके फादर मेरे पास आए, सर इनको हटाओ बच्चों को बड़ा गलत काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को होता है ना कि पढ़ाई करें,
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी की, इवन आपको मनोज पुंज की बात बताऊं,

0: यही कॉलेज में था, कॉलेज में फर्स्ट आया, साथ में ये काम भी करते थे। और उनको ये नहीं होता था, एक हमने म्यूजिक एल्बम बनाई मेहर मित्तल नाइट, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले बहुत चली, वो मैंने डायरेक्ट की थी, तो इन्होंने प्रोड्यूस की थी, पहला इनका वेंचर था बड़ा। तो उसमें भी हमने दिल्ली जाके उसकी रिकॉर्डिंग की मल्टीपल सेटअप कैमरा से, और एक दिन में सारी फिल्म बना दी उसकी रिकॉर्डिंग। तो इस तरह से वो लोग जो काम करते थे, खाना पीना सोना रहना उनके लिए कुछ नहीं था। आज की डेट में भी अभी भी गौरव तेजन के फोन आते हैं, सर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है, जा रही है, हमने लिखे भी एक दो प्रोजेक्ट, चल रहे हैं, आप आ जाइए।
1: हशर के बाद आपने मिस पंजाबन आपने फिल्म बनाई, लिखी आपने, तो उसके बारे में बताइए किस तरह से आपको ये फिल्म लिखने का आइडिया मिला।
0: एक्चुअली जैसे बताया कि इनके साथ जो डायरेक्टर या राइटर का जो रिलेशन होता है मेरा बिल्कुल डिफरेंट था उससे, क्योंकि वो मेरे को एज ए गुरु भी मानते थे, तो खुल के बात करते थे। अच्छी चीज तभी बनती है जब एक टीम वर्क है, अकेले का काम नहीं होता। कोई आइडिया दिया, हमने देखा कि अच्छा लगा नहीं लगा, तो मेरी बात को सुनते थे कि नहीं सर बोल रहे हैं तो कोई ना कोई इसमें होगा, हम इसको इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन मिस पंजाबन में हमारे से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि जो मिस पूजा का इमेज था और जो हमारे कैरेक्टर का इमेज था फिल्म में, वो दोनों डिफरेंट थे
1: जी।
0: क्योंकि लोग मिस पूजा को और तरीके से ले रहे थे स्टेज के हिसाब से, एज ए सिंगर पहली फिल्म थी उसकी, तो हम उसको दूसरे तरीके से ले रहे थे। लेकिन फिल्म को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लाइक किया, और उसमें सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। और एक बात और है जो मैं फिल्म मेकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेहनत तो है, उसके अलावा ऑडियंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। हर फिल्म से हम बहुत कुछ सीखते थे कि आगे क्या होगा। कभी भी मैं जाता था कि ये फिल्म या किसी और की फिल्म भी हो, मैं देखता था, तो मेरा एक स्टूडेंट है राहुल नारंग अभी जो मेरे साथ काम कर रहा है, तो हम प्रीव्यू देखने गए फिल्म का, मेरे नेफ्यू की फिल्म थी, तो बोला सर ये फिल्म कैसे चलेगी। मैंने कहा बड़ा सिंपल रूल है, फिल्म देखते वक्त दो घंटे ढाई घंटे क्या आपको कोई और ख्याल आया। कहता आया, कितनी बार आया। कहता सर तीन बार मैं बाहर चला गया। मैंने कहा 30% रेस्ट कर दूं। अगर फिल्म देखते वक्त आपका ख्याल कहीं नहीं गया तो इसका मतलब फिल्म हिट है।
1: बिल्कुल, एक डायरेक्टर का और राइटर का काम ही यही होता है कि किस तरह से आप दर्शकों को बांध के रखते हैं सिनेमा हॉल में या वो कहीं भी फिल्म देख रहे हैं। तो मिस पूजा और हरीश वर्मा को लेके आपने ये फिल्म बनाई, तो हरीश वर्मा को किस तरह से आपने जोड़ा अपने साथ इस फिल्म में।
0: एक्चुअली हरीश वर्मा उस टाइम में सीरियल कर रहा था, तो हमने सोचा कि कोई हम नया लड़का इंट्रोड्यूस करें जो इस फिल्म को करे, क्योंकि मिस पूजा भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसका भी, तो वो चाहिए जिसको एक्टर भी अच्छा हो और इंसान भी अच्छा हो, क्योंकि उसका रोल ही ऐसा था, बड़ा क्रिटिकल रोल था। लेकिन उसने उस रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, दोनों ने बहुत मेहनत से। एक्चुअली क्या होता है रमेश जी, मैं आपको बताऊं कि अच्छी फिल्म एक टीम वर्क है। अगर आप कहें कि एक प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बना सकता है, नहीं, एक डायरेक्टर बना सकता है, नहीं, एक राइटर बना सकता है, नहीं, एक टीम वर्क है, टीम काम करती है
1: जी। बिल्कुल,
0: तो इसलिए ये टीम वर्क है, मिलके काम किया जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए
1: जी। प्रोफेसर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं।
0: ठंडी ठंडी चल ली आज पूरे दी हवा,
1: फिल्म हशर, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शिक्षाविद, फिल्म लेखक, निर्माता और निर्देशक प्रोफेसर पीएस नरूला। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, उनमें चर्चित रही सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी की, उनके ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके बारे में बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आपको किस तरह से आया?
1: एक्चुअली मेरे को मिले आज से कोई 20 साल पहले, एक इंग्लैंड से आए थे मिस्टर, बड़े अच्छे इंसान थे। वो कहते मैंने एक दो फिल्में बनानी है, उसमें से एक फिल्म है सरदार जोगिंदर सिंह जी के ऊपर,
0: पूर्व सीबीआई निदेशक
1: सीबीआई के। तो हमने उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की, दिल्ली मिलने गए, मैंने उनकी लाइफ स्टडी की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जब हम उनके घर गए, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस पे मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसपे फिल्म बनाई जाए। मैंने कहा जी मैंने ये स्टडी किया, बताओ है कि नहीं, क्योंकि जब मैं जाता था अपने प्रोजेक्ट पे काम करके जाता था। फिर कहते अच्छा चलो जैसे आप कहते हो हम बनाएंगे। तो मैंने पूछा जोगिंदर सिंह जी आपको डर नहीं लगता, आपने बड़े केस ले रहे हो? कहते निरुला जी मेरे पास प्रूफ है कि स्कूटर के ऊपर भैंसे लेके जाते थे,
0: स्कूटर के ऊपर
1: भैंस बिठा के उसके चार्ज लिए जाते थे गवर्नमेंट से, कि भैंस नंबर स्कूटर का होता था। तीसरी बात यह है कि मेरे को अपने हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मान है, अगर वो मेरे साथ कुछ करेंगे तो वो भी नहीं बचे, वो नहीं करेंगे। फिर हम उनके होम टाउन जलालाबाद में गए जहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो हम बाजार से गुजर रहे थे तो इमीडिएटली एक दुकान आई बेकरी की, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, हम भी रुक गए। देखा तो बेकरी का एक मालिक ऑर्डिनरी आदमी बाहर आया, तो उनसे बड़े प्यार से उसे मिले, उसको हग किया। तो मैंने कहा जोगिंदर जी कौन है? कहते ये मेरा बचपन का क्लास फेलो है, मैं जब भी अपने गांव जलालाबाद आता हूं, तो मैं इसके मिलने के बाद ही अपने घर जाता। तो उनकी हम्बलनेस, तो मैंने कहा आपको तो टाइम नहीं मिलता, आप किस टाइम में कोई भगवान का नाम कुछ पाठ पूजा? कहते जब मैं ट्रेवल करता हूँ तो मैं पाठ करता हूँ
0: जी।
1: तो बहुत कुछ इन लोगों से सीखा। उस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि उनकी जो लाइफ कैसे थी, किस तरह से उन्होंने अपने काम को निभाया।
0: और उसके बाद आपने राम सेतु पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: राम सेतु की बात यह है कि उस पे मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, शायद इतना तकलीफ किसी और फिल्म में नहीं। रीजन ये है कि उस फिल्म पे पहले तो हमने रिसर्च की, मेरे पास अप्रोच किया जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मिस्टर सिद्धार्थ, यमुनानगर से आए कि मैंने एक फिल्म बनानी है, आप इस पे काम कीजिए। तो हमने काफी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद मैटर कलेक्ट किया, करने के बाद जब हम शूटिंग पे निकले तो कहने लगे आप इमीडिएटली रमेश शर्मा आ जाइए, क्योंकि दो दिन के बाद हो सकता है कर्फ्यू लग जाए
0: जी,
1: और फिर हम शूट नहीं कर सकेंगे। तो रमेश जी यहाँ से मैं इमीडिएटली आई वॉज इन चंडीगढ़, बॉम्बे गया, वहां से मेरे कैमरा मैन थे मिस्टर भारद्वाज, उनको कहा फिल्में तैयार रखो, फिल्म के ऊपर शूट की थी हमने 2007 की बात है। तो वो लेके हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर हम 1 बजे में रात को पहुँचा उनके घर, सुबह 7 बजे हमने चेन्नई की फ्लाइट ली, वहाँ से फिर रमेशम पहुँचे, और रात को ही हमने शूट करना शुरू कर दिया। और हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने सोचा धर्मशाला तो मिल ही जाएगी, तो एक धर्मशाला में जमीन पे हम सोते थे और शूट करते थे दिन में। 2 दिन में हमने सारा शूट 3 दिन के करके आ गए और फिल्म एडिट की, लेकिन मुश्किल आई, फिल्म को सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था। 6 महीने हो गए हम चक्कर लगा रहे थे दिल्ली सेंसर बोर्ड के, वो कहते थे ये कुछ शॉर्ट्स निकाल दो। तो मैंने कहा जो शॉर्ट्स हैं कि इसकी जो इनॉग्रेशन की है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की है, उसकी फोटो है हमारे पास, वीडियो है, उन्होंने की है। तो मैंने बता दिया कि लगा दिए। 6 महीने के बाद क्या हुआ कि सारे जो चैनल्स थे वो मेरे घर पे आ गए, रजत शर्मा जी कहते आपके इंटरव्यू करेंगे, चेयरमैन के साथ बात होगी, क्यों नहीं कर रहे इसको सेंसर। तो प्रेशर जब पड़ा, जब मीडिया ने इसको उठाया, तो इमीडिएटली वो फिल्म सेंसर से पास होगी, हाईली अप्रिशिएटेड
0: जी। आपने 400 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स बनाई हैं,

0: इनमें से कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है और क्यों?
1: वैसे तो जैसे बच्चे होते हैं आपके, सब बच्चे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर बात करें जो हिस्टोरिकल फिल्म है ऊधम सिंह, वो मेरी सबसे नजदीक है, क्योंकि उसके बाद में ऊधम सिंह दोबारा फिर बनी, एक बार 2000 के आसपास बनी थी, उसमें राज बब्बर था
0: जी।
1: वो फिल्म का भी सारा काम मैंने किया, लेकिन नाम नहीं था मेरा। बॉम्बे 15 दिन राज बब्बर जी के पास ही रहा
0: जी।
1: तो मैंने कहा मैं बना देता हूँ, लेकिन क्यों, मैं इसमें फिल्म बना चुका हूँ, आप दोबारा बना रहे तो बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, और कुछ नया आएगा। उसमें जो चीजें रह गई थी मैंने ऐड भी की, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरे को खुशी है। उसके बाद तीसरी बार बनी जिसमें विक्की कौशल था, सरदार ऊधम
0: जी।
1: लेकिन लोग यही कहते हैं जिन्होंने वो मेरी पहली फिल्म देखी है कि जो पहले वाली ऊधम सिंह थी वैसी फिल्म नहीं। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता वो भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही राम सेतु के ऊपर भी एक फीचर फिल्म बनी, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, राम सेतु की जो डॉक्यूमेंट्री है वो ज्यादा अच्छी है 20 मिनट की, लेकिन फीचर फिल्म इतना नहीं कह सकी जितना उसमें कहा है
0: जी।
1: ऐसे एक और प्रोजेक्ट है महाराजा दिलीप सिंह के ऊपर, वो लंदन में जाके हमने शूट की, उस फिल्म को भी हाईली अप्रिशिएट किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स में वो दिखाई गई। उसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर अमरजीत सिंह, बड़े अच्छे अजीज है मेरे, और वो फिल्म को भी हमने बहुत अच्छी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद उसके ऊपर फीचर फिल्म भी बनी, लेकिन लोगों ने कहा डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है। उस हमने दो लैंग्वेज में बनाई थी, एक इंग्लिश में और एक पंजाबी।
0: प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं अपनी लाइफ में, हाल ही में आपने एक फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर एक बुक लिखी है, ABC ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, तो ये किताब लिखने का आपको आइडिया कहाँ से आया?
1: रमेश जी, मैं पिछले 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ। एक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था कि फिल्में फ्लॉप क्यों होती
0: जी,
1: और 90% फिल्में फ्लॉप होती। उसमें बहुत से कारण दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक ही कारण मानता हूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर है। अगर प्रोड्यूसर को पता हो कि एक अच्छी फिल्म के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर कई तरह के होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर है मौज मस्ती के लिए आते हैं यहाँ पे, कुछ है अपना काम करने के लिए आते हैं, कुछ अपने आप को लॉन्च करने के लिए आते हैं, लेकिन फिल्म फ्लॉप ना हो, वो जितने पैसे लगे हैं उतने वापस आ जाए एटलीस्ट, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर किताब लिखी, लेकिन ये किताब मैंने एक डिफरेंट मोटिव के लिए लिखी। इस किताब को अभी मैंने रिलीज करना है बॉम्बे में, इसकी कीमत मैंने रखी है एक कॉपी की 50 लाख।
0: 50 लाख?
1: हाँ जी।
0: ऐसा क्यों?
1: यही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि जो नया प्रोड्यूसर आता है उसको पता नहीं होता कि मेरे को क्या सही है क्या गलत है, और वो ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो उसको मिसगाइड करते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो मैंने सजेस्ट किया है कि आप अपने साथ एक एक्सपीरियंस्ड और ऑनेस्ट इंसान को जोड़िए, जिसको आप डेजिग्नेशन दीजिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर
0: जी।
1: और इस किताब के साथ जो मैंने 50 साल रख रखे हैं कि अगर आप ये मेरी किताब खरीदोगे तो मैं आपको 1 साल आपके प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करूंगा और आपको प्रॉफिट में ला के दूंगा, जैसे मैंने और फिल्मों में लोगों को ला के दिया। क्योंकि ऐसे एक USA आए थे मेरे पास, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी, ए डिसेंट अरेंजमेंट, आई वॉज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वहां से मेरे को ये आइडिया आया, शवाना आजमी थी उसमें, तो बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी।
1: तो अब दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई और अच्छा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, बहुत से अच्छे लोग हैं मेरे से भी ज्यादा काबिल है, इंडस्ट्री भरी पड़ी है, उसकी आप गाइडेंस लीजिए, एडवाइजर बनाइए उसको, और फिर ये किताब मेरी तरफ से आपके लिए कम्प्लीमेंट्री फ्री होगी
0: जी। एक और आपने किताब लिखी है पासवर्ड, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों।
1: रमेश जी, जैसे आपको पता है कि मेरा फिल्म मेकिंग के साथ फिल्म टीचिंग भी बहुत रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, बॉम्बे में और चंडीगढ़ में, और बहुत सारे लोग मेरे से फिल्म मेकिंग सीख के भी गए
0: जी।
1: तो एक बार मेरी नोएडा में वर्कशॉप थी आज से 10 साल पहले, तो उस वर्कशॉप के बाद क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, फिल्म राइटिंग, एक बहुत यंग मैन मेरे पास आया, आके उसने विश किया मेरे को ग्रेसफुली और बोला सर वी हैव सेव्ड माय लाइफ। तो मैंने कहा लाइफ की बात कहां से आ गई, और कुछ लोग भी खड़े थे, हम सब लोग हैरान हो गए, कहते मैंने सुसाइड करनी थी, आज खत्म कर लेना था अपने आप को, जबरदस्ती मेरे दोस्त मेरे को ले आए, और मैंने ये सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। तो उसके बाद वो चला गया, मैं परेशान हो गया कि कौन सी ऐसी बात है जो एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स और एज ए फिल्म मेकर लोग मेरे को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, कौन सी ऐसी बात मैं कह देता हूँ जिससे उनकी लाइफ में चेंज आ जाती है। उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। शॉर्ट फिल्म बनाते मेरे को बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, पढ़े लिखे मिले, विद्वान लोग मिले। तो लाइफ को देखने के बाद पता चला कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उसका सलूशन नहीं हमारे पास। और मैंने रिसर्च की कि हमारे दिमाग के अंदर दो ड्राइव्स हैं, एक सी और एक डी।

0: डी में 1% विजडम है, डी में 99%, वो लॉक है
1: जी।
0: और वो अगर खुल जाए तो हम अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो खोलने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या है कि जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए पासवर्ड नहीं होगा तो नहीं चलेगा
1: जी, बिल्कुल।
0: तो अगर आप पासवर्ड लगाओगे तो आपकी विजडम वाली जो ड्राइव है खुल जाएगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी किताब लिखी है। इसके ऊपर एक फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ कि फिल्म बनाए जो आज का यूथ है, क्योंकि शायद मेरी ये लास्ट फिल्म होगी। उसके बाद मैं फिर खुद पासवर्ड पे काम करूंगा। पासवर्ड के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2।
1: तो दरअसल पासवर्ड है क्या, पासवर्ड बताइए हमारे सुनने वालों को।
0: सर मेरे तो मन में आया था कि ये पासवर्ड को मैं नेट पे डाल दूं और लोग उसको देख के, लेकिन फिर ऊपर से आवाज आई जिसने मेरे को दिया है कि आप ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजर्व करता है और डिजायर करता है उसी को देना है
1: जी। तो प्रोफेसर नरुला, आप युवाओं के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल पर आधारित पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से आप युवाओं के लिए ये लेकर आए हैं प्रोग्राम, ताकि वो भी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, किस तरह से?
0: अभी तो आई एम जस्ट गिविंग वर्कशॉप्स इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो लेटली मेरे लिए, मेरी पंचकूला में मैं रहता हूँ एट प्रेजेंट, तो मेरी मुलाकात श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता से हुई। मैंने उनको बताया कि ये मेरा प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप स्कूलों में करो। तो कहे कौन से स्कूल में करेंगे? तो मैंने कहा जी जहाँ बहुत बच्चे वो पढ़ते हैं जो जिनके पेरेंट्स ज्यादा अमीर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 19 सेक्टर का स्कूल पंचकूला का रखते हैं। गुप्ता जी खुद भी वहां पहुंच गए और जो स्पीकर रहे हैं विधानसभा के
1: जी,
0: और उसके बाद मेरी वर्कशॉप हुई स्कूल में। वो बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स एक दिहाड़ी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, और वो बच्चे बहुत खुश हुए वो सुन के देख के। SD कॉलेज में अभी लेटली मेरी वर्कशॉप हुई थी, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरे साथ एक और आर्टिस्ट है, मेरे स्टूडेंट भी है, मेरे जानकार भी है, कुलराज रंधावा, वो भी मेरी वर्कशॉप में मेरे साथ साथ देती है। इसलिए मैं बहुत से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो आएं और इस किताब को जो मैं प्रिंट करा के सेल करूंगा, सर उसकी कीमत होगी एक रुपया।
1: एक किताब की कीमत आपने 50 लाख रुपए रखी और दूसरी किताब की कीमत 1 रुपया,
0: हाँ।
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि वो जो है वो प्रोफेशनल काम है। आप 50 लाख दोगे तो 50 करोड़ कमाओगे
1: जी, बिल्कुल।
0: इसमें ये है, ये मेरी लाइफ की एक कंट्रीब्यूशन है कि जिस सोसाइटी ने, जिस मुल्क ने, जिस देश ने, जिस लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, मैं उसके बदले में कुछ तो देके जाऊं
1: जी,
0: और जो मेरे पास मिला है मैं बांट के जाऊं।
1: बिल्कुल। प्रोफेसर नरुला, जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो आप उन जितने भी लोग इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उनको फिल्म मेकिंग के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का?
0: रमेश जी, तीन चीजें होती हैं, एक है इन्फॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है विजडम। अगर आपने सक्सेस होना है, चाहे फिल्म लाइन हो या कोई दूसरी लाइन हो, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो आपको आम मिल जाती है, लेकिन विजडम नहीं मिलती। जो विजडम है वो आपके अंदर है। नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, अपना खाना पीना, योग, एक्सरसाइज, जो कुदरत ने हमें दिया है उसको फॉलो कीजिए, और उसको फॉलो करने के बाद ये जो सिंपल पासवर्ड लगा लीजिए, जो मेरे को मिला है वो आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओजस या एनर्जी आ जाएगी, जिससे आप राइट डिसीजन ले सकोगे, और राइट डिसीजन अगर ले लिया जाए लाइफ में तो आपके लिए सक्सेस आपके पांव पे है
1: जी।
0: सो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी फिल्म लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज या ट्रेनिंग लेना चाहे, मेरी कोई फीस नहीं होती, मैं कुछ नहीं चार्ज करता, वो आए मेरे से मिले और गाइडेंस ले और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि यही है कि मैंने भी कहीं से सीखा है, अब मैं चाहता हूँ मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा करूँ जो मेरा ये भारत देश है ये आगे बढ़े।
1: क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे फिल्म मेकिंग को लेकर, जिंदगी किस तरह से जी जाती है उसको लेकर, क्योंकि आपने इसके ऊपर रिसेंटली बुक लिखी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आपकी एज कितनी है, तो मैं कहता हूँ 21। 21 पे मैंने अपने आप को लॉक कर दिया था
1: जी,
0: क्योंकि 21 के बाद तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए आज भी जो मेरी एज है वो 21 है। फिजिकली चाहे चेंज नजर आए, मेंटली, इमोशनली एंड फ्रॉम ऑल एंगल्स आई एम 21। एंड आई जस्ट पास ऑन दिस मैसेज टू ऑल माई फ्रेंड्स, दोज हु आर सीनियर सिटीजन्स, के आप

0: सीनियर सिटीजन जरूर हो, लेकिन यही सोचो कि आपकी एज 21 है, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सको। फिल्म में अक्सर मैंने देखा है वो ही लोग जाते हैं जिनको पैशन होता है, लेकिन गलती से कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं जो इसको प्रोफेशन समझते हैं। तो मेरी एडवाइस है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप इसको प्रोफेशन समझते हो तो कामयाबी के चांस बहुत कम है। कुछ और काम कर लीजिए, फिल्म मेकिंग में मत जाइए। बहुत हार्ड लाइफ है, लेकिन इसके साथ जो आपको लोगों का प्यार मिलता है, जो आपको इज्जत मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, उसका कोई भी सानी नहीं।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रोफेसर नरूला, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, शाम सुहानी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया रमेश जी।
1: दोस्तों, शाम सुहानी कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान थे शिक्षाविद, फिल्म लेखक, निर्माता और निर्देशक प्रोफेसर PS नरूला। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मीनाक्षी कालिया। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की

0: दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz से ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: FM 107 ਇਸ਼ਾਰੇ 2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज हरियाणा के करनाल और बल्लभगढ़ में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंजाब के युवाओं से अपना जीवन नशे के हाथों में न सौंपने का आह्वान किया और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महारानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने यह बात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा

0: यहाँ पर प्रस्तापित की है।
1: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी आज करनाल में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया और कहा कि उनका जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा की भावना सदैव देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और देश के प्रति उनकी अतुलनीय योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण, विचारों में दृढ़ता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय राजनीति का एक ऐसा युग पुरुष बनाया जिनकी स्मृति सदैव देशवासियों के मन में जीवंत रहेगी। उन्होंने कहा कि अटल जी के विचार, दूरदर्शी नेतृत्व और उच्च आदर्श राष्ट्र सेवा के पथ पर हम सभी का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। करनाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए, भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री स्वयं भी बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और लोगों का उत्साह बढ़ाया।

0: उल्लेखनीय है कि देश भर में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज बल्लभगढ़ में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में सेक्टर 3 पुल से तिगांव सड़क और बस अड्डा बाजार होते हुए बल्लभगढ़ खंड स्तरीय कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति के उत्साह को बढ़ाया। यात्रा में हजारों लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। श्री गुर्जर ने नागरिकों से राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंजाब के युवाओं से अपने जीवन को नशे के हाथों में न सौंपने का आह्वान किया। श्री नायब सिंह आज पंजाब के अमृतसर के रामपुरा स्थित सुलह कुल मंदिर में आयोजित सत्संग के दौरान साध संगत को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम नाम का सिमरन मन को स्थिर करता है, विवेक को जागृत करता है और मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनने की शक्ति देता है। युवा कुछ समय ईश्वर स्मरण के लिए निकाले और अपने माता पिता के सपनों को अपना संकल्प बनाए। उन्होंने गुरु नगरी अमृतसर की धरा को पवित्र त्याग, तपस्या, भक्ति, वीरता और मानव सेवा की धरा बताते हुए कहा कि भारत सदियों से आध्यात्मिक प्रकाश से पूरी दुनिया को आलोकित करता रहा है। श्री नायब सिंह ने परम पूज्य संत श्री साहिब दयाल जी द्वारा शुरू किए गए इस आध्यात्मिक मिशन द्वारा मानवता के लिए निरंतर हो रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब विकास के साथ संस्कार हो, समृद्धि के साथ संवेदना हो, शक्ति के साथ संयम हो और प्रगति के साथ प्रकृति तथा परमात्मा का स्मरण हो। उन्होंने लोगों से देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने की अपील की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भाजपा के सत्ता में आने के बाद नशा बेचने वालों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाएगा और गुंडागर्दी को खत्म करके स्वच्छ प्रशासन दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वंदे मातरम के अपमान पर उन्होंने कहा,
1: देखिए इन्होंने तो शुरू से ही करते हैं जी, अपमान करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, इन्होंने जो संवैधानिक पद है उन्होंने अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। ये लोग तो ऐसे हैं, इन्होंने तो जिसका भी देखे उसी का अपमान करने का काम किया।
0: उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर चुनावी वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि वे ईमानदार शासन देने में असफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, अब राज्य का मेहनती युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा ही नहीं, महिला और कर्मचारी वर्ग भी राज्य सरकार से परेशान है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महारानी अवंतीबाई

0: लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं और महान योद्धाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महारानी अवंतीबाई लोधी को महान व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि उन जैसी महान विभूतियों का जीवन युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। केंद्रीय मंत्री वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज करनाल में आयोजित भव्य कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि महारानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महारानी अवंतीबाई लोधी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा गौरव को मजबूत करने का संकल्प लिया। रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए हैं, जिनकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है। जींद मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल नरेश कुमार ने बताया कि बारिश में इन लिफाफों में राखी सुरक्षित रहेगी।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और एक बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस वर्षा के मौसम में डाक विभाग ने इस वर्ष ये विशेष वाटरप्रूफ एनवेलप जारी किए हैं, जिसमें कि भाई बहन अपने रक्षाबंधन की जो राखियां है वो की सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकते हैं। इस लिफाफों की कीमत 10 रुपये है, जिसमें हमारे काउंटर पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में राखी भेज सकते।
0: उन्होंने बताया कि आकर्षक दिखने वाले इन लिफाफों पर डाकघर का लोगो, राखी की सुंदर आकृति और हैप्पी राखी अंकित है। श्री नरेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय डाक पर नियमानुसार छूट भी दी जाती है। उन्होंने बहनों से विदेशों में रह रहे भाइयों को राखी समय पर पहुंचाने के लिए त्यौहार से कम 10 से 15 दिन पहले डाक भिजवाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतरिम उत्तर जारी कर दिए हैं। छात्र परसों 18 अगस्त तक आधिकारिक UGC नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों के लिए प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज हरियाणा के करनाल और बल्लभगढ़ में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंजाब के युवाओं से अपना जीवन नशों के हाथों में न सौंपने का आह्वान किया और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महारानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: जय माला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या कभी आपने आसमान में उड़ने का सपना देखा है? बादलों के ऊपर की वो दुनिया एक अलग ही रोमांच से भरी होती है। जहां ऊंचाई का रोमांच है, वहीं खतरे भी कम नहीं। एक छोटी सी भूल भी बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन चील सी पैनी नजर दुश्मनों पर जमाए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को तत्पर हमारे वीर जवान सागर की गहराई, पहाड़ों की चढ़ाई और आसमान की ऊंचाई नापने का हौसला रखते हैं। इनकी जांबाजी से भरे कई कारनामे हम देखते सुनते नहीं अघाते। आंखें हैरानी से फैल जाती हैं तो दिल गर्व से भर उठता है। आज एक ऐसे ही अद्भुत वीर की शौर्य गाथा का वर्णन हम करने आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल ससिल विवियन पार्कर।

एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर, जिन्हें उपनाम मिला नोजी। सिकंदराबाद में जन्मे सेसिल विविन पार्कर भारतीय वायुसेना में 31 अगस्त 1952 में कमीशन हुए। 30 अगस्त 1957 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे। एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने सेना में प्रशिक्षण देने और मोर्चों पर बने रहने का काम किया। अक्टूबर 1966 में उन्होंने एक ऑपरेशनल यूनिट का गठन किया और यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर बने। इस यूनिट से जो भी विद्यार्थी आगे बढ़े, उन्हें उच्च स्तर के शिक्षण तकनीक, मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस यूनिट ने प्रशिक्षण और ऑपरेशनल दो भूमिकाएं निभाई, जिनमें वो विभिन्न कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए सफल हुए। जिस तरह से उस वक्त एक विंग कमांडर के रूप में सेसिल विविन पार्कर ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्रयास से कम दुर्घटना संख्या के साथ विमानों का उच्चतम उपयोग कर दिखाया, इसके लिए उन्हें 26 जनवरी 1970 को वायु सेना पदक से नवाजा गया।

जब एक व्यक्ति सैनिक जीवन में ढलने का निर्णय लेता है तो वो पूरी तरह से खुद को मातृभूमि के लिए समर्पित पाता है। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह का स्वार्थ छू भी नहीं पाता। लेकिन अगर हम ये समझें कि सैनिक का जीवन एक ही ढर्रे पर चलता हुआ या नीरस सा होता है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। छोटी उम्र से कठिनाइयों का सामना करने वाले हमारे जांबाज सिपाही मन में कहीं ना कहीं एक बच्चे, एक किशोर को जीवित रखते हैं। जब भी मौका मिलता है वो अपने साथियों के साथ उस अल्हड़पन को भी जरूर जीते हैं। एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर के विषय में उनके साथी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। खाने पीने और मौज मस्ती को अपनाकर जीने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर यूं तो मस्त मौला अंदाज के मालूम होते हैं, लेकिन उनके कारनामे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कठिन चुनौतियों में वो साहस और धैर्य का किस कदर परिचय देते हैं और एक नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। ऐसा एक रोमांचक वाक्या उन्होंने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया था। अपने जीवन में तरह तरह के एयरक्राफ्ट की उड़ान भर चुके एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने बताया कि जब उन्हें रोजाना प्रशिक्षण के दौरान फ्लाइट उड़ाने कहा जाता था तो वो कई तरह के करतब किया करते थे। उनका कहना है कि जब विमान को कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है तो ये एक अलग ही तरह का कौशल होता है और सभी फ्लाइट पायलट्स को प्रिय भी होता है। उन्होंने बताया कि 1956 में वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत थे। तब रोजाना प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट ले जा रहे थे कि उन्हें एक जूनियर को साथ ले जाने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि वो उस जूनियर को 500 फीट 300 फीट की ऊंचाई का अंदाजा करवा दे और थोड़ा नीचे लाकर भी दिखा दे। ऐसा करते हुए एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने अपने जूनियर को 100 फीट की ऊंचाई तक ले आए। जूनियर ने फ्लाइट संभालने की इच्छा जताई तो एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने उन्हें फ्लाइट दे दी। अब कुछ ही देर में फ्लाइट के सामने पेड़ नजर आने लगा और संभालने के बावजूद फ्लाइट पेड़ के ऊपर जा भिड़ी। सीवी पार्कर ने कमान अपने हाथ में संभाली और तुरंत हेडक्वार्टर में सूचना दी। इस पूरी बात में उन्होंने सच बताते हुए सारी बात सामने रखी। उनकी सच्चाई ही थी जिसने उन्हें वापस भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाने का मौका दिया। कुछ 6 महीने की सजा और 200 रुपए के जुर्माना भरने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट की कमांड दी गई।

हम देखते हैं कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहला कदम बढ़ाते ही गिर जाता है। गिरने के बाद उठने के कारण ही चलना सीखना संभव होता है। लेकिन बड़े होते होते हम ये सबक भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पहली ही बार में सफल होना चाहिए, वरना हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारे जवानों के साथ ऐसा नहीं है। वो कड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरते हैं और खुद को लगातार मांझते हुए हर दिन एक नए उत्साह को दिल में जगह देते हैं। आप ही सोचिए, आप और हम में से अगर किसी को प्रशिक्षण के पहले ही दिन जान से खेलना पड़े तो क्या हम वापस जाने के बारे में सोचेंगे? लेकिन ऐसा किसी जवान के साथ हो तो वो न सिर्फ वापस जाएंगे बल्कि अपनी वीरता से देश का गौरव हासिल करने का मौका भी नहीं छोड़ेंगे। अपना 20वां जन्मदिन मनाने से कुछ हफ्ते दूर पहली ट्रेनिंग के दौरान ही एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।

देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। कोई भी नौजवान जब सिपाही बनने का सपना लिए जाता है तो उसके दिल में एक अलग ही जज्बा होता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का मादा तो रखता है, लेकिन ट्रेनिंग के दिन आसान नहीं होते। फिर जब पहले ही दिन जान पर बनाए तो क्या किया जाए, आप और हम क्या करेंगे ये तो पता नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन जो सेसल विवियन पार्कर ने किया था वो काबिले तारीफ है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में सेसिल विवियन पार्कर टेम्पेस्ट 2A एयरक्राफ्ट में सवार थे और उन्होंने देखा कि फ्रंट पैनल खुल गया है और वहां आग भी नजर आ रही है। उन्होंने तुरंत एयरबेस में संपर्क किया, लेकिन जवाब आने तक रुकने का समय उनके पास है या नहीं वो ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बाहर निकलने के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुरक्षा के जो तरीके उन्हें सिखाए गए थे वो अपनाते हुए वो दो बार तो सफल नहीं हुए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और आखिरकार एयरक्राफ्ट से बाहर फेंका गए। उनके पास पैराशूट तो था, लेकिन उनके दोनों जूते इस कोशिश में एयरक्राफ्ट में खिंचा गए। जब वो जमीन पर नीचे आए तब उनके दोनों पैरों में जूते नहीं थे। कुछ जख्म, थोड़े जलने के निशान और पैरों में चोट के साथ वो नीचे उतरे और कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक होकर एक बार फिर आसमान में हवा से बातें करने के लिए वो तैयार थे। आखिर यही तो वो साहस और जज्बा है जो हमारे वीर सैनिकों को एक मिसाल बनाता।

अगले दिन ही मौत को मात देने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की जांबाजी के किस्से कम नहीं हैं। एयरक्राफ्ट चालकों को समय समय पर कई काम करने होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब 1970 में वो कुछ साथियों के साथ नेपाम टैंक छोड़ने एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस गए। इसके लिए एयरक्राफ्ट के एक विंग में दो और दूसरे में एक या दो टैंक रखकर ले जाया जाता है। आसमान बादलों से भरा होने के कारण नीचे उड़ान भरकर ले जाया जाता है। जब टैंक छोड़कर वो वापस आने लगे तो सेसिल विवियन पार्कर ने देखा कि 16 टैंक भेजे गए थे लेकिन उतारे गए सिर्फ 15। वो इस ओर ध्यान दे ही रहे थे कि उन्हें अपने एयरक्राफ्ट की राइट विंग झुकती हुई महसूस हुई। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो टैंक उनके एयरक्राफ्ट में ही रह गया है। यही नहीं, टैंक पूरी तरह भरा हुआ भी था और उसका वो हुक खुला हुआ था जो फायर करने के समय खोला जाता है। सेसिल विवियन पार्कर अपने एयरक्राफ्ट में खतरनाक टैंक के साथ थे, पर उन्होंने न घबराते हुए अपने सभी साथियों को पहले लैंड करने की सलाह दी। सेसिल विवियन पार्कर ने जैसे ही एक टैंक खुली हुई अवस्था में उनके एयरक्राफ्ट में होने की बात कही तो नीचे खलबली मच गई। उन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया और एक बार फिर वापस उनके एयरबेस जाने का ऑर्डर दिया गया। अब मजबूरी ये थी कि वहां भी केवल एक रनवे होने और उसके व्यस्त होने के कारण आखिर उन्हें दूसरी जगह एयरक्राफ्ट उतारने की सलाह दी गई। अपनी सूझबूझ, बहादुरी और धैर्य का परिचय देते हुए सेसिल विवियन पार्कर ने बड़ी सावधानी से बिना कोई नुकसान पहुंचाए एयरक्राफ्ट को लैंड किया। जांच के बाद ये पता चला कि कुछ तकनीकी खामियों और हवा के दबाव के कारण टैंक का हुक खुल गया था। ये सेसिल विवियन पार्कर की सूझबूझ का ही नतीजा था कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए सेना की संपत्ति की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध में सेसिल विवियन पार्कर ने विंग कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बम वर्षक स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया और दुश्मनों के कब्जे वाले ऐसे कई क्षेत्रों में पहुंचकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जहां पहुंचना मुश्किल था। ऐसे कई मिशन का उन्होंने नेतृत्व किया। ऐसे ही एक मिशन से लौटते समय दुश्मन सेना के कृपाण विमानों ने उनकी वायुसेना टुकड़ी पर धावा बोल दिया। इस परिस्थिति में विंग कमांडर सेसिल विवियन पार्कर ने दुश्मन के एक कृपाण विमान को मार गिराया और दूसरे विमान को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इसके अलावा एक अन्य मिशन में भी उन्होंने दुश्मनों के तीव्र एयरक्राफ्ट और छोटे हथियारों के हमले का सामना करते हुए अटक में दुश्मन की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया।

0: युद्ध के दौरान अपने हर मिशन में सेसिल विवियन पार्कर ने साहस, दृढ़ संकल्प के साथ साथ धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए देश को जीत दिलाने का काम किया। उनके कामों को साहस और बहादुरी की उपमाओं से नवाजा गया। अपने कार्यों से जहां वो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे, वहीं वो अपने माताओं के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में सामने आए। युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर को युद्ध पश्चात देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: जिद्द है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबल

महावीर चक्र से सम्मानित होने के बाद वो सेना में तकरीबन 15 वर्षों तक कार्यरत रहे। इस दौरान वो मोर्चों के साथ साथ प्रशिक्षण देने में व्यस्त रहे। पदोन्नति हासिल करते हुए वो क्रमशः विंग कमांडर, जीपी कैप्टन, एयर कोमोडोर और एयर वाइस मार्शल के पद पर कार्यरत रहे। 31 अगस्त 1986 को आप एयर वाइस

मार्शल के पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए। उस वक्त आप एयरफोर्स अकेडमी में सेना नायक के पद पर कार्यरत थे। भारतीय वायुसेना में अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर ने 22 तरह के एयरक्राफ्ट चलाने और तकरीबन 3,850 घंटे की उड़ान भरने का रिकॉर्ड कायम किया।

एयर मार्शल सेसिल विवियन पार्कर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक किताब भी लिखी जिसका नाम है एयरलूम्स रैंडम रिकलेक्शंस ऑफ एन एंसेंट एविएटर। हम तो यही कहेंगे कि अपने सैन्य जीवन में आसमान से बुलंद इरादे, हवा सा निर्भीक व्यक्तित्व और बादलों सा धीर धरने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर का जीवन एक पाठशाला की तरह है जिससे आने वाली पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा और आज उनका नाम रोशन कर रहे हैं। देश के इस जांबाज सैनिक को हमारा सलाम।

एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम की संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: FM 107.2 MHz से ये आकाशवाणी है, तुसे सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। आहुन सुन दे अगला प्रोग्राम हवा महल। ए प्रोग्राम असी विविध भारती दे मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।

0: आज प्रस्तुत है हास्य नाटिका कंगन। लेखक है ब्रिज मोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: अरे वाह, आज किस भले आदमी का मुंह देखा है सुबह सुबह। सच, आज तो तकदीर जोर मार रही है मेरी।
2: ये सोने का कंगन, इस तरह पड़ा मिला।
1: हाय मुरारी लाल,
2: किसी ने देखा तो नहीं?
3: कमाल है, आप हैं तो अकेले
2: जी,
3: फिर भी बातें किए जा रहे हैं। यहाँ तो कोई मुरारी लाल है नहीं, ना कोई मुरारी लाल है
1: जी। मुरारी लाल मेरा अपना नाम है। अच्छा? और अगर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है?
3: मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखिए देखिए, बात यह है कि आदमी अपने आप से बातें कब करता है बताऊं?
1: कब करता?
3: जब वो परेशानी में हो, या ज्यादा खुशी में, या फिर
1: पागल हो, यही कहना चाहते हैं ना?
3: अरे नहीं मुरारी लाल जी, आप तो बुरा मान गए, नाराज होने लगे। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि आप अकेले ही बातें कर रहे हैं, तो पूछ लिया कोई खास बात है।
1: अरे वाह, आप देखो मैं, अरे जान न पहचान बड़े मियां सलाम, क्या मतलब है आपका है? अरे आप अपना रास्ता देखिए।
3: देखिए आपसे मतलब जरूर है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना, तो आपको कोई चीज मिल गई।
1: चीज? कुछ तो नहीं मिला मुझे, कुछ भी तो नहीं।
3: कैसे नहीं मिला कुछ
1: जी?
3: मैंने अभी देखा है।
1: क्या देखा?
3: आपने जमीन से कुछ उठाकर अपनी जेब में रख लिया
4: जी। हाँ मैंने भी देखा है।
1: आपने भी देखा है? तो क्या आप दोनों ने देख लिया?
4: तो क्या अंधा समझते हो मैं? बोलो क्या उठाया अभी अभी जमीन से?
1: जी बात ये है कि कंगन
4: देखें।
3: ये तो है सोने का, एकदम असली सोने का है,
4: बिल्कुल नया लगता है। चलकर पुलिस

0: सुन रहे पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा ये मतलब आपका हाथ
1: क्या कह रहे हैं आप
0: धीमे बोलिए ऐसी बात कर रहे हैं आप अगर किसी ने सुन लिया तो अरे लक्ष्मी लौट जाएगी
2: तो क्या करना चाहिए फिर
0: अरे करना क्या चाहिए तो क्या नाम है दुलारी लाल जी नहीं मुरारी लाल जी ऐसा है कि मुरारी लाल जी आप ही बताइए क्या करना चाहिए इस सोने के कंगन का जो आपको मिला है
1: करना क्या चाहिए अरे मुझे मिला है इसलिए मेरा हुआ आप लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हैं भाई
2: क्या कहा क्या कहा कौन होते हैं हम लोग
1: जी
2: और आप कौन होते हैं जी मिली हुई चीज को पूरा हथियार लेने वाले
0: धीमे बोल रहा
1: हूँ मैं तो धीमे बोल रहा हूँ
0: आप अपने से काम लीजिए अपने से
1: भाई तो मैं क्या करूँ आप ही बता दीजिए ना
0: कहीं एकांत में चल करके कंगन में से मेरा मतलब अपना अपना हिस्सा बात
1: क्या आपने अपना अपना हिस्सा जी आप लोग इसमें कहां से हिस्सेदार हो गए भाई अरे मिला तो मुझे आप लोग अपना रास्ता देखिए मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की
2: है साहूकारी की है आपने अरे तेरी क्या अकल घास चढ़ने चली गई है
0: देखिए शोर मत मचाइए
1: मैं कहां मचा रहा हूँ
0: आप तो नाराज होने लगे
2: जी अगर कंगन में से हिस्सा बांटने को तैयार हो तो ठीक है बड़ा मैं अभी पुलिस को खबर किए देता हूँ
0: आप तो बस पानी की तरह उबलने लगे जरा मुरारी लाल को सोचने समझने का मौका तो दीजिए कहिए तो कहिए वो क्या नाम है
1: मुरारी लाल जी
0: मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा
1: जी आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
0: अरे भाई हम लोग तीन हैं
1: जी
0: आपको कंगन तीन हिस्सों में बांटना पसंद है या फिर किसी चालाक बंदर को हिस्से बांटने के लिए नियुक्त किया
1: मैं आपकी बात समझ गया ठीक है मगर हम बांटेंगे कहाँ
2: ये हुई ना कोई कायदे की बात चलकर बगल वाले पार्क में बांट लेते
0: हैं ठीक है ठीक है लेकिन हिस्सा हिस्सा ईमानदारी से बांटा जाना चाहिए
1: बिल्कुल बिल्कुल और देखिए जल्दी कीजिए मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है
0: अच्छी बात है चलिए फिर चलिए उधर
1: चलिए आइए ना आप भी आइए
2: हाँ चलिए
0: हाँ तो मुरारी लाल जी
1: जी
0: आप ही बताइए कि इस कंगन का बंटवारा कैसे किया जाए
1: आप ही लोग बताइए ना
2: हमारी समझ में तो एक बात आती है
1: क्या
2: कि इस सुंदर कंगन को काट कर बांटना बेकार है
0: तो फिर क्या किया जाए
2: देखिए ऐसा कीजिए कि ये पूरा का पूरा कंगन आप लोग मुझे दे दें और बदले में मुझसे 200 रुपए ले लीजिए अपने हिस्से के बदले में आप लोग ये रुपए आधे आधे बांट लीजिए
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह तो बड़े चालाक बनते हैं जैसे हम लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं
2: इसमें मूर्खता की क्या बात है
0: अरे
2: आप लोगों को फोकट में 100-100 रुपए नहीं मिलेंगे
0: वाह वाह वाह कहिए हम लोगों को 100-100 रुपए और आपको 200 रुपए पूरा कंगन है
1: मैंने कंगन पाया है
0: गलत बात नहीं कह रहा
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरी समझ में तो ये आता है कि सराफा बाजार में चलकर इसे 3 बराबर हिस्सों में कटवा देते हैं फिर अपना अपना हिस्सा लेने में सहूलियत
2: ये भी कोई अकलमंदी की बात कर रहे हैं आप वहां जाकर फंसना है क्या
0: मुरारी लाल जी बात तो सही है अकल से काम लीजिए
1: भाई तो कीजिए
2: उपाय एक ही है ये कंगन मुझे सौंप दीजिए बेच दीजिए
0: लेकिन आप तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी
2: चलिए अगर आप 200 रुपए कम समझते हैं तो मैं ये 50 रुपए और बढ़ा सकता हूँ
1: कमाल है आजी आप 250 रुपए में सोने का कंगन खरीदना चाहते हैं
2: देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है 300 रुपए आप दे दीजिए और ये कंगन ले लीजिए हम मुरारी लाल 150 बांट लेते हैं
0: क्या कह रहे हैं जी आप सिर्फ 150 रुपए में हाथ से सोने का कंगन चला चले दो कहाँ 150 रुपए और कहाँ ये सोने का कंगन इतना बुद्धू नहीं हूँ मैं जितना आप लोग समझ रहे हैं
2: देखिए भाई मुरारी लाल जी की अगर आप ये सोचे की इस जरा से कंगन में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे तो मियाँ ये मिलने से रहे
1: इसे आप जरा सा कंगन कहते हैं
2: और क्या
1: अरे सोने की चीज है जरा सी तो होगी ही कोई किला दो किलो की थोड़ी होगी अरे मैं 150 रुपए में यह कंगन हाथ से हरगिज नहीं जाने दूंगा
2: ये मत भूलिए मुरारी लाल जी ये कंगन आपको रास्ते में पड़ा मिला है और इस पर हम दोनों का भी बराबर का हक बनता है
1: रास्ते में पड़ा मिला है तो इसके मायने ये नहीं है कि आप लोग इसे सस्ते में हथिया ले
0: देखिए आप लोग धीरे बोलिए
1: मैं तो धीरे
0: अच्छे अच्छे खेल बिगड़ जाते हैं।

0: झिक झिक मत कीजिए, मैं इस कंगन के 400 रुपए दे सकता हूँ। वो तो आज मेरी सैलरी मिली इसलिए पैसे पास में है। आप लोग अपने हिस्से में 200 रुपए बांट लीजिए।
1: हाँ ठीक है, हम लोगों को ये मंजूर, निकालिए आप 400 रुपए, हम लोग बिना किसी झंझट के 200 रुपए बांट लेते हैं। मुरलीलाल जी आप कंगन इनको सौंप।
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मेरे हाथ से ये कंगन सिर्फ 200 रुपए में निकल जाए ये नहीं हो सकता।
0: देखिए मुरलीलाल जी, मेरे 400 रुपए कम है तो आप ही बढ़ाकर के दाम बोल दीजिए, हम लोग खुशी खुशी दो भागों में बांट लेंगे। क्यों भाई साहब, ठीक है?
1: बिल्कुल ठीक है,
0: आप ले लीजिएगा ये कंगन।
2: हाँ ये ना कोई बात है, मैं तो इस कंगन के 500 रुपए दे सकता
0: हूँ। 500?
2: उन 500 रुपए में सिर्फ आप दोनों का हिस्सा रहेगा। आप लोगों को इस सौदे में कोई एतराज तो नहीं है?
1: चलिए हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग 250 रुपए खुशी से बांट लेंगे।
0: चलिए आप कह रहे हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये कंगन आप ही रख लीजिए, आप तो बस जल्दी से 500 रुपए निकालिए।
2: लेकिन लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपए
1: तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। आप अपनी सोने की अंगूठी
2: जी
1: और ये पुरानी घड़ी साथ में दे दे। हाँ। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे।
0: ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए, देर करने से काम बिगड़ सकता है, है ना?
2: अच्छी बात है, ये लीजिए 200 रुपए और ये लीजिए घड़ी
1: और वो अंगूठी,
2: और निकल नहीं रही है।
0: लाइए मैं निकाल।
2: ये लीजिए, ये रही अंगूठी। देखिए आप लोग आपस में झंझट मत कीजिएगा, बराबरी से अपना हिस्सा बांट लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
0: नमस्ते
2: नमस्ते।
3: ठीक ही कहा है, देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। अरे फूल कली कहाँ हो?
4: अरे चूल्हे में।
3: अरे वाह,
4: तुमसे तो शादी करके मेरी सारी जिंदगी चूल्हे में ही मिल गई।
3: अरे
4: क्या हुआ, ले आए सारा सामान?
3: फूल कली अभी घर गृहस्थी के सामान की बात मत करो।
4: अरे क्यों ना करूं, घर में कुछ बचा नहीं है, कल से उपवास करना है क्या?
3: अरे नहीं फूल कली।
4: फिर क्या, कल के लिए घर में आटा चावल कुछ भी नहीं?
3: अरे ना सही फूलकली, मेरी बात तो सुनो, तुमने जो वो 200 रुपए एक सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का?
3: अरे फो, मेरी पूरी बात तो सुनो फूलकली।
4: क्या खाक सुनूं तुम्हारी बात, फिर कटवाया है जेब?
3: अरे नहीं फूलकली नहीं, आज मैं कुछ खो कर नहीं कुछ पा कर लौटा हूँ।
4: अरे क्या मतलब, कुछ साफ साफ तो बोलो।
3: अरे आज मुझे बड़ी कीमती चीज हाथ लगी है, ये लो देखो।
4: अरे ये तो सोने का कंगन है।
3: हाँ।
4: और सुनो वो दूसरा कहाँ है?
3: एक ही है,
5: किसी से कहना नहीं भूल कली, रास्ते में पड़ा मिला है।
4: सर लेकिन सोना मिलना तो शुभ नहीं होता है। सुनो इसमें से कुछ हिस्सा दान करना।
3: अरे देखो फूलकली, इसमें से कुछ हिस्सा तो मैं पहले ही दान कराया हूँ।
4: अच्छा,
3: अब तुम इसमें से चुपचाप अपना मंगल सूत्र बनवा लो और फिर मुझे कभी ताना मत मारना कि इतने साल शादी के हो गए और मंगल सूत्र नहीं बनवाया।
4: हाँ मैं सब समझती हूँ जी। सुनो चलो अभी अभी अपन बाजार चलते हैं। और सुनो वो जो सब सामान तुम्हें लिखवाया था ना वो सब ले।
3: लेकिन वो 200 रुपए जो तुमने सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का, मैं तो इस कंगन की खुशी में सब भूल ही गई।
3: हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि मिले हुए सोने का कुछ हिस्सा दान कर देना। हाँ, चाहिए। हाँ। तो मैं दान कराया वो रुपए,
4: पूरे 200 रुपए।
3: हाँ फूलकली, पूरे 200 रुपए और साथ में अपनी घड़ी और अंगूठी भी दे आया।
4: हे भगवान, अरे वो कैसे?
3: बात ये है फूलकली कि जब मुझे ये कंगन मिला ना तो दो लोगों ने मुझे उठाते देख लिया।
4: अच्छा,
3: इसलिए उनका हिस्सा छोड़ना पड़ा।
4: हाय राम, तुमने ये क्या किया?
3: क्या हुआ?
4: अरे वो तो मेरी माँ की निशानी थी और तुमने मिटा दी। आए आए, उनकी आखिरी निशानी।
3: अरे उनकी आखिरी निशानी तो तुम हो फूलकली।
5: फिक्र मत करो, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये कंगन कम वजनी नहीं है।
3: मैंने बस सोच समझ कर सौदा किया है।
5: चलो चलो चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: अच्छा, तुम अपनी पसंद का मंगल सूत्र बनवाना। देखो जल्दी से, जल्दी से आया, जल्दी से, देर नहीं कर।
2: इधर निकला फूलकली, इधर निकला, बैठो बैठो।

0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: हम ये कंगन लाए हैं, इसे देखकर ये बताइए कि इसमें सोना कितना है।
2: ठीक है, कल तक मैं मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद
0: पसंद करो। देखो,
1: ये कंगन, ये कंगन आपके पास कहाँ से आया?
0: जी, कहीं से नहीं, ये तो हमारा है, क्या बोल गई?
2: हाँ सेठ जी, ये तो हमारा है, हमारा।
0: जी,
1: मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कंगन किसका है।
0: फिर क्या पूछ रहे हैं?
1: मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कंगन आप लोगों के पास कहाँ से आया।
0: देखिए,
1: क्योंकि ये कंगन सोने का नहीं है
0: जी। हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? जरा ठीक से देखिए।
1: देखे भाई, हमारा तो ये रोज का काम है, दिन भर में न जाने कितना सोना चांदी बेचते खरीदते रहते हैं।
2: तो है,
1: इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
1: इसकी कीमत मुश्किल से 2 रुपए की भी नहीं। आपको किसी ने ठग लिया है।
0: क्या कर रहे हैं
1: आप? कहीं उस गिरोह के चक्कर में तो नहीं आ गए? इस सड़क पर नकली सोने का कंगन डाल देते हैं, फिर उठाने वाले से अपना हिस्सा मांग कर ठगते हैं।
2: ठगे गए ना? अरे पहले जेब कटवाए आए और अब लेकर के ये नकली कंगन आ गए।
0: तुम कभी
2: नहीं सुधरोगे।
0: बिल्कुल ठीक, ऐसा ही किया था उन बदमाशों ने। अरे मैं लूट गया रे, वो शैतान मुझे लूट कर ले गया रे। अरे मैं बर्बाद हो गया बोल गली।
3: अभी आपने ब्रिज मोहन की लिखी हास्य नाटिका सुनी कंगन। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये हास्य नाटिका आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म फाइटर से, आवाज़ें विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी मौलिक थी। गीत के बोल कुमार, मेलोडी और विशाल ददलानी के थे। संगीत विशाल और शेखर का था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मंच से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें

0: राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा

0: योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियन

0: चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से। आवाज़ें विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ।
1: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी

0: चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले क्योंकि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की scheme है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी overall India में 700 से 800 centers run कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 centers हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहती है कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं, 10 to 5 की शिफ्ट

और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ाकर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, तो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है। आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को, या 25 साल हो गए हो, या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में है, या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सर बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं, ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका सिंगल हाउस होल्ड है, वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए, जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में

0: भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती है। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती है जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Hone tusi sun rahe si sponsored program.

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप

क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

दोस्तों बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणा घाट यानी पश्चिम बंगाल में अपने किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका है तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

0: दोस्तों बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।
1: कभी

सन 1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से ब्याह रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अपने दिलों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: छह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के छाया गीत में गुलजार के अशार और उन्हीं के नगमे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी, और खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी है। उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

0: न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं, कब आते हो कब जाते हो। दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।
1: बस रे।

0: नया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: जाग के काटे सारे रैना, जाग के काटे।
0: हम अभी हाजिर हुए।

दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम, जैसे जंगल में शाम के साए, जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रूस सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है, और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिजर की रातों में ये देखो।

उदास पानी, फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक क्षय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की कीली कीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान चल रहा है।

0: फिल्म शक, संगीत वसंत देसाई का। फिल्म इजाजत, पंचम का संगीत।
1: चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।

0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम, फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छायागीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती। वीको टर्मरिक।

0: वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: वीको टर्मरिक

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। अज साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ विच अटल बिहारी वाजपेयी दे बुत दा उद्घाटन कीता। अज हरियाणा दे करनाल विच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल दी अगवाई विच अते बल्लभगढ़ विच केंद्रीय राज मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अते स्थानक विधायक मूलचंद शर्मा दी अगवाई विच तिरंगा यात्रावां कढ़ियां गईयां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंजाब के नौजवानों नूं अपने जीवन नूं नशियां हाथ ना सौंपण की अपील की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महारानी अवंती बाई लोधी नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं कहा कि आजादी संग्राम विच बहादुर औरतां दे योगदान नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय सीधे टैक्स बोर्ड के विदेशी जायदादों वाले छोटे टैक्सदातावां लई विदेशी जायदादों का खुलासा योजना नियम अज तो लागू हो गए ने। रखड़ी के त्यौहार के मद्देनज़र डाक विभाग ने रखड़ी भेजने लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए ने जो सिर्फ 10 रुपए विच उपलब्ध होंगे। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस हैकाथॉन साइबर कुश्ती लई रजिस्ट्रेशन अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगी। मुख्य प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: हुन पेश है पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। सारे सुनने वालेयां दा बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं बब्बू मान दे गाए इस गीत तों।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आओ हुण सुणदे आं अगला गाना मलकीत सिंह दी आवाज़ विच।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ।